मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित मैं उद्दम, जाया हर हर जियो परया, सैल पत्थर मैं जंत उपाए, ता कर जके आगे करतरिया।

सुखे काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोय ना किस की धारिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया। उडे उडे आवे सह कोसा, तिस पाछे बचरे शरिया। तन कवन खिलावे कवन चुगावे, मन मैं सिमरन करिया। सब निधान दस अठ सिधान, ठाकुर करतल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइये, तेरा अंत न पारा वरिया। राग यासा महला चौथा, सो पुरख को अंकार। सत गुर प्रसाद सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन हर अगम्मा अगम अपारा। सब त्यावै सब त्यावै तुद जी, हर सच्चे सृजनहारा। सब जीत मारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू काट काट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बिडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्मे अंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी। से मुकत पए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जमकी फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिनका भउ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जिन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सराहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनक करें हर पूजा जी, तप तापें जपें बेअंता। तेरे अनेक पढ़ें बहु समर्थ शास्त्र जी, कर करे आखट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी, तुझ जे वडे अवर ना कोई। तू जोग जोगे को सदा सदा, तू एको जी, तू निश्चल करता सोई। तुदे आपे भावे सोई वरतै जी, तू आपे करें सोई। तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सियार मैं डासाए। जो तो भावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हूं पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनु कृपा करें तन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मन मुख गवाया, तुझे आप विछोड़िया मिलाया। तू दरिया ओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई ना है। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है, सोई जन जाने। हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया। सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा की आसब होए। तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए। जन्ना ने गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवरडे पहले निवासा, पानी पावक तने किया। पंकज मोह पग नी चाले, हम देखा तें डूबी अले।

दुष्ट दोग ते लियो बचाई सवैया। पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे माते एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री सपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोय बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ गए गयो तुहारो द्वार। बाएं गहे की लाज वस गोविंदास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सत गुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया। शब्दो ता गावो हरि केरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सुधारो हरनाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना। सब ना गल्ला समरात स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सतारो अरनाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे घर ता तेरे सब किश है। जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे।

आधारो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जन इच्छा सब पुजाइया।

अनहद बाजे, आनंद सुनो वट पागियो, सकल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सकल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पै सरसे, पूरे गुरते जाने।

आप अष्टपदी जब अकार हो कशना दृष्टिता पाप पुन तब कहत होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संग कमात जब इसका वर्ण चेहना जाप तब हरक शोक किसे विहपत जब अपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ के सुहोवत परम आपन खेल आप वरतीजा नानक करण हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल धनी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी जब एका हर अगमे पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुपाय तब शिव सकत कहो कित ठाय जब आप आप अपनी जोत धरा तब कवन डर कवन कात डरा आपन चलते आप करना हार नानक ठाकुर अगमे पार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अवगत है गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचरे गहदे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पुरख पद होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन रंग कार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत को कीस जह जोत स्वरूपी जोत संग समावा तह किस पूह कवन तृप्तावा कारण करावन करण हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पहाई जह सर्व कला आप है परवीन तह वेद कतेब कहाँ कूचीन जब अपन आप रुतहारा तो शगन अवशगन कहाँ विचर जह आपन ऊचे आपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जहनो आप जह शल छेद अभेद समाया ऊहा किस है व्यापत माया आपस को आप है देश त्यो गुण कर नाही प्रवेश जहाँ एक भगवंता तह कौन अचिंद किस लागे चिंता जहाँ आपन आप पतियारा तह कौन कथा कौन सुनन हारा बहु बेअंत उचते ऊंचा नानक आपस को आप पहुंचा जहाँ आप रचो परपंच कर त्यो गुण में कीनो विस्थार पाप पुन्नता पई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत आल जल माया जंजाल होम मोह परम भय पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक जहाँ अवगत भगत है आप जह पसरा पसार संत प्रताप दोहु पाह का आपह तनी उनकी शोभा उनहु बनी आपह कौतक कर आनंद चोज आपह रस भोग निर्जोग जिस भाव तिस आपन ना लावा जिस भाव तिस खेल खिलावै बेशुमार अथाह अगणत अतुला जो बुलावो त्यों नानक दास बोला श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे बरतन हार नानक एक को पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथा आप सुनन हार आप ही कह विस्थार जात सुभाव सृष्ट उपाय आपन भण लय समाय तुम ते भिन्न नहीं केश होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जीव आप बुझाए साच नाम सोई जन पाए सो सामदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंतर सब तक हाथ दीन दयाल अनाथ कुनाथ जिस राख तिस

नानक एह गुण नाम सुख मनी दुख रोग बिनसे पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते ऊच ता की शोभा बनी। नानक एह गुण नाम सुख मनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहि

चरण जो भोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

अनेक विधि समझावो, हम अज्ञान अलप मत थोरी, तुम्हें अपन बिरद रखावो, तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले,

तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखनहार दयाला, नानक घर के गोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कार योग सतसंगी जनो, वडभागे हाँ जिथे आप जिया ने संध्या समय तो उपरंत सोधा लहरा साहब जी की पावन बाणी के जाप सरवण किते, उपरंत सेवक परिवार भाई जतेंद्र सिंह, बीबी सुखबीर कौर बासी परिवार वालों काका पवनजोत सिंह बासी के जन्म की खुशी को मुख रखदे हां, परिवार वालों श्री सुखमणी साहब जी की पावन बाणी के पाठ आरंभ करवाए गए सन, निर्विघनता सहित समाप्ति उपरंत परिवार की बच्चे की चढ़ती कला की अरदास आप संगत ने शमूलियत की है। इस मौके पर सतगुरां ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है, पवित्र उपदेश आप संगत ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित श्रवण किए हैं। परिवार वालों आई हुई समूह संगत का तह दिल तो धन्यवाद है, जिन्होंने रुझेव्या के समा कढ़दिया परिवार के सदे पत्र से पहुँच के परिवार का मान वधाया है। परिवार वालों आई हुई समूह संगत वास्ते गुरु के लंगर तैयार करवाए गए हैं। आप संगत ने गुरु के लंगर विच्चों प्रशादा छक के जाने की कृपालता करनी जी। समा है गुरबाणी शब्द कीर्तन का। सेवा निभाउण के सत्कारयोग भाई हरमनदीप सिंह जी, हजूरी रागी जथा सचखंड श्री दरबार साहब अमृतसर वाले, आउतना पासों गुरबाणी शब्द कीर्तन सरवण करिए जी। भुला चुका दिखेमा आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पराद हमारे खंडो अनेक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखण हार दयाला नानक करके गुले तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले राखो राख।

कीती हो बताई हो। री बाई बेड़ी देण ना जाई, देख बेड़ी रियो समाई, हमारा बेड़ी प्राणिया दारा रहाओ। बेड़ी प्रीत मजूरी मांगे, जो कऊ छान सवावै हो, लो कुटंब सबूते तोरै, तो अपन बेड़ी आवै हो। ऐसो बेड़ी बंधना साको, सब यंत्र सब ठाई हो, गुंगै मां अमृतरस चाखे, आ पूछे कहण ना जाई हो। बेटी के गुण सुंदरी बाई, जलन बांध त्रुथा प्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी, लंक भीखण आ प्यो हो। सोरठ कर तीजा अणमड़िया मुंदल बाजे, बिन सावन कंधर गाजे, बादल बिन बिरखा होई, जो तत विचार है कोई, मौको मिलियो राम सनेही, जेह मिल गया दे सुदेही रहाओ। मिल पास कंचन होया, मुख मनसा रतन परोया, निज पाहु पया परम पागा, गुर पूछे मन पतिया गा, जल पीतर कुंभ समान्या, सब राम एक कर जान्या, गुर चेले है मन मान्या, जन नामे तत पछान्या, राग सूरठ बाणी भगत रविदास जी की ओंकार, सत गुर प्रसाद। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अनल अगमन जैसे लहर, मैं उदद जल केवल जल माही, माधवे क्या कहिए प्रमे ऐसा, जैसा मानिए हुए ना तैसा रहाव। नरपतेग सिंह सुन सोया, सुपने पया भिखारी, छात्र आज बिरचित्र बिचरत दुख पाया, सुगत पई हमारी, राज प्रियंग प्रसंग जैसे है, अब कछे मरम जनाया, अनेक कटक जैसे पुल परे, अब कहते कहण ना आया, सर्वे एक ने कह स्वामी, सब कट पुग वै सोई, कह रविदास हाथ पै नेरै, सहज हुए सो होई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम प्रेम बदन तुम बाधे, अपने छूटने को जतन करै, अपने छूटने को जतन करो, हम छूटे तुम यारा दे। माधवे जान तो हो, जैसी तैसी अब कहा करो, वैसी रोहाओ। मीन पकर फांक्योर काट्यो, रांद कियो बो बानी, खंड खंड कर भोजन कीनो, तो न बिसरियो पानी, अपन बापै नाही किसी को, पावन को नहीं राजा, अपन बापै नाही किसी को, पावन को हर राजा, मुँह पटल सब जगत ब्यापियो, भगत नहीं संताप। कह रविदास भगत एक बाडी, अबे कास्य कही है, जा कारण हम तुम्हें राधे, सो दुख अजू सही है, दुलाब जन्म पुन फल पायो, बिरथा जात अभिवेक है, राजे इंद्र समसर ग्रह आसन, बिना भगत कहो के लेख है, ना विचारो राजा राम को रस, जे रस अनरस बिसर जाही रहाओ। जान अजान पहे हम बावर, सोच सोच दिवस जाए, इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध, परमार्थ प्रवेश नहीं, कहियत यान अचरियत अनकच, समझना पर अपर माया, कह रविदास उदास दास मत, पर हर कोप करो जी दया। सुख सागर सुतर चिंतामन, काम तेन बस जाके, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नव निध कर तलता के, हर हर हर न जपै रसना, अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण बेद बेद, चौथी सकर माही, ब्यास विचार कहियो परमार्थ, राम नाम सरनाही, सहज समाधि उपाद रहत फुन, बड़ा पागले लागी, कह रविदास प्रगास हृदय धर, जिन मरण पै पागी। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम पे हैं चकोरा, माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे, तुम से तोर कवन से जोरे रोहाओ। जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाति, साची प्रीत हम तुम स्यों जूरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी, जहा जहा जाओ तहा तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और ना देवा, तुम्हारे भजन कटे जम फांसा, भगत हित गावे रविदासा, जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बुंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसा बेचारा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, जैसे त्रवर पंख बसेरा रहाओ। राखो कंध सारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा, बंके बाल पाग सिर डेरी, यो तन है गो पसम की ढेरी, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जात कमीनी पाद कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा। चमरटा गांठ ना जनई, लोग गठावे पनही रोहाओ, आर नहीं जे तोपो, नहीं रामबी ठाओ रोपो,
लोग गंठ गंठ खरा बिगुचा हों बिन गांठे जाए पहुचा। रविदास जपै राम नामा में जमस नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत भीखण की ओंकार सतगुर प्रसाद। नैनो नीर बह तन खीना पे केस जो दवानी। रुदा कंठ शब्द नहीं उचरै क्या करे परानी। राम राय होए बैद बनवारी अपने संता लहु उबारी। रोहाओ माते पीर श्री जलन है करक करे जय माहे। ऐसी बेदिन उपज खरी पई वाका औखद नाई। अरका नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा। गुरु प्रसाद कह जन भीखन पावो मुख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मूलक पुन पदार्थ पाया। नक जतन कर हृदय राखे अरतन छप छपाया। हर गुण कहते कहण न जाई जैसे गुंगे की मिठियाई। रुहाव रसना रमत सुनत सुख श्रवणा चेते सुख होई को भीखण दे नैन संतोखे। जा देखा ता सोई तनासरी महला पहला कर पहला चौपदी कुवंकार। सत नाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। गुर प्रसाद जीव डरता है अपना कैसों करी पुकार। दुख विसारण सेवे सदा सदा दा तार। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दा तार। रुहाव अंदन साहिब सेविए अंत छिड़ाए सोए। सुन सुन मेरी कामनी पारी उतारा होए। दयाल तेरा नाम तरा सतगुर बाणे जाओ। रुहाव सरबंग साचा एक है दूजा नाही कोए। ताकि सेवा सो करे जाको नदर करे। तुद बाज प्यारे केव रहा सावड़े आए देहे जित नाम तेरा लाग रहा। दूजा नाही कोए जिसे आग्या प्यारे जाए कहा। रहाओ सेवी साहब अपना बना जाचो कोए। नानक ताका दास है बिंद बिंद चुक चुक होए। साहिब तेरे ना बिटो बिंद बिंद चुक चुक होए। रहाओ तनासरी महला पहला हम आदमी हाँ एक दमी। मोहलात्मा तना जाना नानक मिन वैत ससरे वो जाके जी पराना। अंधे जीवना विचार देख के ते के दिना। रहाओ सास मास सब जीव तुम्हारा तू मैं खरा पे यारा। एक शायर नानक शायर कहते सच्चे प्रवद गारा। जे तू किसे ना दे मेरे साहिबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन मैं सो किस पाया पुरबल के का लैना। नाम खसम का चेतना किया कपटी कपट कमाना। जम दुआर जा पकड़ चलाया ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनिया किछ कही है। पाल रहे हम रहन ना पाया जीवती अमर रही है। तनासरी महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए तपै हो जीड़ा बिल लाए। सिरज सवारा साचा सोए तो सिलसरिया चंगा क्यों होए। हिकमत हुगम न पाया जाए क्यों कर साच मिलो मेरी माए। रहाओ वकर नाम देखण कोई जाए ना को चाखे ना को खाए। लुखपति ने नापत हुए तापत रह जा राखे सोए। तापत रह राखे जा सोए जा देखा ता रहा समाए। त्रिविण दूजी नाही जाए जे को करै कीता क्या होए। जिसनो बख्शे साचा सोए होनी उठ चलना मुहत के ताल। क्यामो दे सागुण नहीं नाल जैसी नजर करे तैसा होए। विण नदरी नानक नहीं कोए तनासरी महला पहला। नदर करे ता सिमरिया जाए आत्मा अंदर वह रह लेवलाए। आत्मा परात्मा को करे अंदर की दुबदा अंतर मरै। उंगर प्रसादी पाया जाए हर सो चित ला गया फिर काल ना खाई। रहाओ सच सिमरिया होवे पर गास ता ते बिख्या मैं उदास। सतगुर की सेवड़ियाए पुत्र कलत्र विच अगत पाई। असी सेवक सेवा करै जिसका जियो तस्या गतर। साहिब भावै सो प्रवान सो सेवक दरगाह प्रवान। सो सेवक दरगाह पावे मान सतगुर की मूरत हृदय वसाए। जो इच्छा सोई फल पाए साचा साहिब कृपा करै। सो सेवक जमते कैसा डरै पंडित नानक करै विचार। साचे बाणी सो धरै प्यार ताको पावे मुख द्वार। जप तप सब यो सब दै सार। तनासरी महला तीजा तनासरी महला पहला। जियो तप तै बारो बार तप तप खपै बहुत बेकार। जै तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी विल लाए। पोता बोलन चखण होए बिन बोले जाने सब सोई। रुहाव जिन कन कीते अखी नाक जिन जेह वा दिती बोले तात। जिन मन रखिया अग्नि पाए वाजे पौने आख्या सब जाए। जेता मूह प्रीत सुआद सबा कालख दागा दाग। दाग दोस
मुहे चुल्या लाए दरगा बै सिर नाहीं जाए कर्म मेला आखन तेरा नाम जित लग तरना होर नहीं थाओ जे को डूबै फिर होवै सार नानक साचा सरबदाता तनासरी मेला पहला चोर सलाहे चीत ना पीजै जे बदी करे तां तां सुना चीजै चोर किया मां भरै ना कोय चोर किया चंगा क्यों होए सुन मन अंधे कुते गुड़ियार बिन बोलै बुझी असचियार रहाओ चोर सवाले चोर से आना खोटे का मुल एक दुगाना जे साथ रखिया बीजर लाए जप रखिया खोटा हो जाए जैसा करे सो तैसा पावे अभी जापे खावे जे वड़ियाई आपे खाए जे सुरत तेहरा जाए जे सकूड़िया कूड़ कबाड़ पावे सब आखो संसार तुल पावे दी परवान नानक जाने जान सुजान तनासरी मोहला पहला काया कागद मन परवाना सिर के लेखना पड़े ए आना दरगा घड़ी तीना लेख खोटा कावने आवे वेख नानक जेव चुरुपा होए खरा ब्राह्मण नावे जिया काए जोगी जुगत ना जाना अंध तीने उजाड़े का बंद सो जो ब्रह्म विचारे आव तेरा सगले कुलतार है दानस बंद सोई दल तो वै मुसलमान सोई मलको वर सतगुर प्रसाद काल नाही जोग नाही नाही सदका ढाक पकड़े ठगन को संसार रहाओ आठ से ती नाक पकड़े सूझते तन लो मगर पाचा कछ न सूझै यो पद्म लो खतरिया ता त्रम छोड़े आ मलेच पाख्या गही श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई त्रम की गत रही अष्ट साज साज पुराण सुधे करे बेदबे आस बिन ना मर के मुक्त नाही कह नानक दास नासरी महला पहला आरती कवंकार सतगुर प्रसाद गगन में थाल राव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मलया नलो पवन चवरो करे सगल बंदराए फुलंत ज्योति कैसी आरती हुए पवखंड ना तेरी आरती ना ता शब्द वाजंत भेरी रोहाओ सह सतावन नैन नन नैन तो एक सहस मूर्त ननायक तो ही सहस पद विमल नानक पद गंध बिन सहस तव गंध देव चलत मोहि समय जोत जोत है सोए तिसका चांदन समय चांदन होए अंगुर साखि ज्योत प्रगट होए ज्योत सुभावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मन वंदनो मै आई पयासा कृपा जल देहे नानक सारंको होए जाते तेरे नावा सतना श्री महला तीजा कर दूजा चौप दे ओंकार सतगुर प्रसाद यो तन खुट नान खुट ना जाए पूरा सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर को सतबल जाई इंगुर कृपा ते हर मन वसाई सेतन वंत हर नाम लेव लाए इंगुर पूरा हर तन प्रगासिया हर कृपा ते वसै मन आए रोहाओ अवगुण काट गुण हृदय समाय पूरा गुर कैसा सुपाय पूरा गुर की साची बाणी सुख मन अंतर सह समानी कै चरज जन देखो पाई दुबदा मार हर मन वसाई नामे मुल्क ना पाया जाए गुरु प्रसाद वसै मने आए समय वसै प्रभे को सोए गुरमति कट प्रगट होए सहज जन प्रभ जान सुजाने सहज जन प्रभ जान पछाणे नानक नाम ले मन मान्या तनासरी महला तीजा हर नाम तन निर्मल अत्यापारा गुरु के शब्द परे पिंडारा नाम तन बिन हो सब बिख जान माया भंज लै अभिमान गुरमुख हर रस चाखै कोय तिस सदा आनंद होवै दिन राति पूरा पाग प्राप्त होए रहाउ शब्द दीपक वरतै तेह लोए जो चाखै सो निर्मल होए निर्मल नाम हो मैं मल धोए साचे भगत सदा सुख होए जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग ते सदा हरख नाय कदे सोग आप मुक्त अवरा मुक्त करावै हर नाम जपै हर ते सुख पावै बिन सतगुर समूह बुलाए अंदन दाजे साथ ना पाए सतगुर मिले सब तृष्ण बुझाए नानक नाम साथ सुख पाए तनासरी महला तीज सदा ताने अंतर नाम समाले सब तृष्ण बुझाए नानक नाम साथ सुख पाए इतना आसरी महला तीज सदा ताने अंतर

जनको कृपा करो जग जीवन, जन नानक पै सवारी। तनासरी महला चौथार के संत जना हर जप्यो तिनका, दुख परम पो पागी अपनी सेवा आप कराई। गुरमते अंतर जागी हर के नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई। गुरमत हर लिव लागी रहाओ संत जना की, जा तर स्वामी तुम ठाकुर हम सांगी। जय श्री मत देवो हर स्वामी, हम तैसे बुल बुलागी। क्या हम किरम नानक कीरे, तुम वड पुरख वडा गी। तुम रिंगा तिमत कह न सका प्रभ, हम क्यों कर मिला भागी। हर प्रभ स्वामी कृपा धारो, हम हर हर सेवा लागी। नानक दासन दास करो प्रभ, हम हर कथा कथा गी। तनासरी महला चौथार का संत, सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बाणी। जो जो कह सुने सो मुक्ता, हम तिस कह सतगुर बाणी। हर के संत सुनो जस कानी, हर हर कथा सुनो एक निमक पल। सब किलवे के पाप लै जानी रहाओ। ऐसा संत साध जन पाया, ते वड पुरख वडाने तन के। तूर मंगा प्रभ स्वामी, हम हर लोच लोचानी। हर हर सफलो बिरख प्रभ स्वामी, जिन जप्यो से त्रवतानी। हर हर अमृत पी त्रिपतासे, सब लाती भुगत पुखानी। जिन केवड़े भाग वड़ी उचे, तन हर जप्यो जपानी। तिन हर संगत मेल प्रभु स्वामी, जन नानक दास दसानी। तनासरी महला चौथा हम अंधले, अंध विखै विखराते। क्यों चाला गुर चाले, सदगुर दया करे सुखदाता। हम लावे अपन पाली, गुरसिख मीर चलो गुर चाली। जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली रहाओ। हर के संसरो जन पाई, गुर सेव्यो बेग बिगाले। सतगुरु सेव खरचर बादू, मत जानो आज के गाली। हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली। जन हर जपया से हर हुए, हर मिलया के अलक लाली। हर हर जपन जप लोच लोचाने, कर कृपा कर बनवाले। जन नानक संगत साध हर मेलो, हम साध जना पगराली। तनासरी महला चौथार हर बूंद पे हर स्वामी। हम चात रखे बिलल बिललाती, हर हर कृपा करो प्रभु अपनी। मुख देवो हर निम खाती, हर बिन रह न सको एक दराती। जो बिन अमले अमली मर जाई है, त्यो हर बिन हम मर जाती रहाओ। तुम हर सरवर अति अगाह, हम लह न सके अंत माती। तुम परै परै परम पर स्वामी, मित जानो अपन गाती। हर के संत जना हर जप्यो, गुर रंग चलू लहराती। हर हर भगत बनियत सोभा, हर जप्यो उत्तम पाती। आपे ठाकुर आपे सेवक, या बनावै पाती। जन नानक तुमरी सरनाई, नानक जन तुमरी सरनाई। हर राखो लाज भगाती, तनासरी महला पंजवां कल जोगा। धर्म को तुम प्याई, केवे छूटा हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर जप्यो तरह तरह की। हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जपावो अपना। हम मागी भगत एकाकी रहाओ। हर के सेवक से हर प्यारे, जन जपेओ हर बचना की लेखा। चित्रगुप्त जो लिखिया, सब छूटी चमकी बाकी। हर के संत जपेओ मन हर हर, लग संगत साजना की। दिनियर सूर त्रिसनागन बुजानी, सेव चरियो चंद चंदाकी। तुम वड पुरख वड अगम्य गोचर, तुम आपे आपे पाकी। जन नानक को प्रभ कृपा की, जय कर दासन दास दसाकी। तनासरी महला चौथा कर पंजवां, दो पद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद गुर तार विचार, मुरार रमोरम। मनमोहन नाम जपीने, दृष्ट गोचर परम्पर स्वामी। गुर पूरे प्रगट कर दीने, राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट। हर संग हरि सत्संग पे, हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नाम छे खट बोले मुख आगर, मेरा हर प्रभ एवना पतीने। जन नानक हर हिरदा सद त्यावो, यो हर प्रभ मेरा पीने। तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो, कर सेवा सदगुर एव। हर हर नाम ते आई, हर दरगा पावे फिर जन्म नाया वै। हर हर हर जोत समाई, जप मन नाम हरी होए सर्व सुखी। हर जसी उच्च सबना ते ऊपर, हर हर हर सेव छड़ाई रहाओ। हर कृपा निध कीनी, गुर भगत हर दीनी। तब हर सुप्रीत बने आई, बोचिंत विसारी हर नाम उतारी। नानक हर पहे अंसखाई, तनासरी महला चौथा। हर पढ़ हर लेख, हर जप हर गाओ, हर पौजल पारी उतारी। मन बचन हृदय ते आए, हर हुए संतुष्ट। एव पाण हर नाम उचारी, एव पाण हर नाम मुरारी। मन जपिए हर जगदीस, मिल संगत साधु मीत। सदानंद हुए दिन राती, हर कीरत कर बनवारी।
रहाओ। हर हर करे दृष्ट तव भयो मन उद्यम, हर हर नाम जपयो गत पई हमारे, जन नानक की पत राख मेरे स्वामी, हरे आय प्रयो है शरण तुम्हारी। तनासरी महला चौथा। चौरासी सिद्ध बुद्ध तेतीस कोट, मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाओ, अंग्र प्रसाद को विरला पावे, जिन को ले लाट लिखिया तुर पाओ, जप मंदरा मैं नाम हर जस उत्तम काम, जो गावे सुने तेरा जस स्वामी, हो तिन कैसत बलिहार जाओ रहा। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम देहो सोई हो पाओ, दीन दयाल कृपा कर दी जय नानक, हर सिमरन का है चाओ। तनासरी महला चौथा। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हरि उत्तम बानी, गावे सुनिया तिन का हर थाए पावे, जिन सतगुर की आग्या सत सत करमानी। बोलो भाई हर कीरत हर पवजल तीरथ, हर दर तिन की उत्तम बात है संतो, हर कथा जन जन जानी रहाओ। आपे गुर चेला है आपे आपे, हर प्रभ चोज विडानी, जन नानक आ मेला सोई, हर मिल सी अवर सब त्या गुहा हर पानी। इतना श्री महला चौथा। इच्छा पूरख सर्व सुख दाता, हर जाके वासै काम ते ना, सोय सार ते आई मेरे जीड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। जप मन सत नाम सदा सत नाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ। जाह हर सिमरन भया, तहां उपाद गत कीनी, उडपागी हर जपना, जन नानक गुर एमत दीनी, जप हर भवजल तरना। तनासरी महला चौथा। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख हुए, हमरी बेदन तू जानता साहा, और क्या जाना कोई रहा। सचा साहिब सच तू मेरे साहा, तेरा किया सच सब हुए, झूठा किसको आखिया साहा, दूजा ना ही कोई। सबना विच तू वरतदा साहा, सब तुझे ते आवे दिन रात, सब तुझी था वो मंग दे मेरे साहा, तू सबना करे एक दात। सब को तो जीवे चै मेरे साहा, तुझते बार कोई ना है, सब जी तेरे तू सब सदा मेरे साहा, सब तुझी माए समाहे, सब ना की तू आसै मेरे प्यारे, सब तुझे ते आवे मेरे साहा, जो पावे त्यो रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पद साह। तनासरी महला पंजवां। कर पहला चौपदे एक ओंकार, सत गुर प्रसाद, पवखंडन दुख पंजन स्वामी, भगत विशल निरंकार, कोट प्राद मिटे किन भीतर, जा गुरमुख नाम समारे, मेरा मन लागा है राम पे अरे, दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने, पंच दूतारे रहाओ। तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भगत सोए दरबारे, सिर बजिया के दाते स्वामी, कर कृपा लियो बारे, तेरा वर्णना जापे रूप न लखिया, तेरी कुदरत गुण बिचारे, जल थल महिल रविया सर्ब ठाई, यगम रूप गिरधारे। कीरत करै सगल जन तेरी, तू अबनासी पुरख मरारे, जो पावे त्यो राखो स्वामी, जन नानक सरन दुआरे। तनासरी महला पंजवां। बिन जल प्राण तजे है मीना, जिन जल सो हेत बडायो, कमल हेत बिन सोया भवरा, उन मार्ग निकस न पायो, अब मन एक स्योमो कीना, मरण जावे सदी संगे, सदगुर सबदी चीना रहाओ। काम हेत कुंचर लै फांक्यो, ओह पर वस पयो बिचारा, नाद हेत सिर डार्यो करंका, उसी हेत बिदारा, देख कुटंब लोभ मोहियो प्राणी, माया क्यों लपटाना, त्रचो कर लीनू अपना, उन छोड़ सुरा पर जाना, गुण बिन गोबिंद अवर संग नेहा, और जानो साध सदा सुहेला, बिन गोबिंद अवर संग नेहा, ओह जानो सदा दुहेला, कहो नानक गुर एह बजायो प्रीत प्रभु सदकेला। तनासी महला पंजवां। कर कृपा दियो मोय नाम बंधन ते छुड़काए, मन ते बिस्तरो सगलो तंदा, गुर चरणी गुर की चरणी लाए, साध संग चिंत बिरानी छाडी, अमद मोह मन बासन दे, कर गढ़ा गाडी रोहाओ। ना को मेरा दुश्मन रहा, ना हम किस कै बैराई, ब्रह्म पसार पसारो पीतर, सदगुर ते सोजी पाए, सबको मीत मोय अपन कीना, हम सब ना के साजन, दूर परायो मन का बिरहाता, मेल कियो मेरा राजन, बिन सोटी ठा मृत बूठा, शब्द लगो गुर मीठा, जल थल महियल सर्ब निवासी, नान करमैया डेठा। तनासरी महला पंजवां। जब ते दर्शन बेटे साधु, पले दिन सोए आए मानंद सदा, कर कीर्तन पुरख बेदाता पाए, मोहे राम जसो मन गायो, भयो प्रगा सदा सुख मन में, सदगुर पूरा पायो रहाओ।
ਗੁਣ ਦਾਨ ਹਿਰਦ ਪਿਤਰ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪੋ ਪਾਗਾ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਵਸਥਿਆ ਗੋਚਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨੰਗ ਲਾਗਾ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਵਸਥਿਆ ਗੋਚਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਚਿੰਤ ਅਚਿੰਤਾ ਸੋਚ ਅਸੋਚਾ ਸੋਗ ਲੋਗ ਸੋਗ ਲੋਭ ਮੋਹ ਥਾਕਾ ਮੈਂ ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਪਏ ਬੇਬਾਕਾ ਗੁਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਭਾਣੀ ਕੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜਮ ਤੇ ਕਾਢੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਲਾ ਪੰਜਵਾ ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸਕਾ ਸੋਏ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ ਤਿਨੇ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ ਤੋ ਬਦਨੀ ਕੀ ਖਟਾਨੀ ਜੀ ਕੀ ਏ ਕਹੀ ਪੈਮਾਨੀ ਅਵਰ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੋ ਤੇਰੇ ਤਿੰਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ ਰੁਹਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲ ਕੇ ਹੀ ਰਾਮ ਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਤਾਨੀ ਡੀ ਨਾ ਡੋਲਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ ਹੋਏ ਜੋ ਬੀਚ ਹਮ ਤੁਮ ਕੱਛ ਹੋਤੇ ਤਿਨਕੀ ਬਾਤ ਬਿਲਾਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਤੇ ਕਨਕ ਵਖਾਨੇ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸੋਭਾ ਬਾਜੀ ਅਨ ਤਬਾਨੀ ਕੋ ਨਾਨਕ ਨਾ ਚਲ ਕਰ ਬਾਤ ਦਿਓ ਗੁਰ ਕੀ ਹੋ ਬੰਧਾਨੀ ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਡੇ ਵਡੇ ਰਾਜਨ ਹਰ ਭੂਮਣ ਤਾਕੇ ਦਰਸਨਾ ਬੂਜੀ ਲਪਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ ਲੋਚਨ ਕੁਛ ਨਾ ਸੋਜੀ ਮਾਇਆ ਮਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਨਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਈ ਜੋ ਪਾਵਕ ਈਦਨ ਧਰਾ ਪੈ ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਇਆ ਘਾਈ ਰਹਾਉ ਦਿਨ ਤਨ ਕਰਤ ਪੂਜਨ ਬੋ ਬਿੰਜਨ ਤਾਕੇ ਮਿਟ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਉਦਮ ਕਰੈ ਸਵਾਨ ਕੇ ਨਿਆਏ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਘੋਖਾ ਕਾਮਵੰਤ ਕਾਮੀ ਬੋ ਨਾਰੀ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਨਾ ਚੂਕੈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਕਰੈ ਕਰੈ ਪਛਤਾਪੈ ਸੋਗ ਲੋਭ ਮੈਂ ਸੂਕੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਰਿਆ ਬੋਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਨਿਦਾਨਾ ਸੂਗ ਸਹਿ ਆਨੰਦ ਸੰਤ ਨੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨਾਥ ਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਗਣ ਕੋ ਹੈ ਕਛੂਐ ਜਾਕੋ ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਵੈ ਜਾਖੋ ਗੁਰਦੀਨੋ ਯੋ ਮੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਬਣਿਆ ਵੈ ਜਾਖੋ ਆਇਓ ਇੱਕ ਰਸਾ ਖਾਣ ਪਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਖੁਦਿਆ ਤਾਕੇ ਚਿਤਨਾ ਬਸਾ ਰਹਾਉ ਬੋਲਿਓ ਮਨ ਤਨ ਹੋਇਓ ਹਰਿਆ ਚਿੰਤਾ ਜਾਖੋ ਦਇਆ ਕਰੀ ਮੇਰ ਠਾਕੁਰ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਜੋ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਲ ਜਾਓ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ ਮਾਉ ਦਿਆਨੰਦ

पूजा ऐसे दृढ़ी विपरीत माया मोह पूलो वरह हीत हर चंदौरी बन हर पातरे एह तुहारो बीत रहा चंदन लेप होत देखो सुख गर्त बसम संगीत अमृत संग नाय रुचयावत बिखैठ गौरी प्रीत उत्तम संत प्ले संजोगी अस जुग में पवित पुनीत जाते कार्थ जन्म पदार्थ काच बादर जीत जन्म जन्म के किल विख दुख भागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख ते निकसियो नानक एक प्रीत नासरी महला पंजवा पानी पखा पीसो संत आगै गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समार यो विश्राम निध पाई तुम करो दया मेरे साई असी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ ते आई राव तुमरी कृपा ते मोह मन छूटै बिन सजाए परमाई अन द्रुप रवियो सब मदे जत कत पेको जाय तुम दयाल कृपाल कृपा निध पलित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुक्ते निमख बुलाई जात ताप जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभु कै मन पाही नाम जपत तृष्णा सब बुझी है नानक तृप्तिया काही तनासरी महला पंजवां जिन कीने वस अपने त्रैगुण पवन चतुर संसारा जग संदान ताप थान खंडे क्या जनते विचारा प्रभ की उलट गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर गाए साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याद तब हूटो रहा ना सुनिए ना मुक्ते बकिए ना मोहे नाम है ओ डीठी अशट गोरी पाए भुलावै मन सब कह लागै मीठी माई बाप पूत हित भ्राता उन घर घर मिलो दुआ किसी वाद काट किस ही पै सगले लल धर्मुआ हौम बले हरि सतगुरु अपने जने चुलत दिखाया गुजी पाहे जलै संसारा भगत न व्यापै माया संत प्रसाद मां सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया अपने घर ले आया काटे तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालो हम बारक तुमरे तारे जेवा एक कवन गुण कही है बेसुमार बेंत स्वामी तिरवंत न किन्ही लही रहाव कोट प्राद हमारे खंडो निक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें अपने बिरद रखाओ तुमरी सरण तुम्हारी आसा तुम्हें सजन सुहेले राखो राखन हार दे आला नानक करके गोले तनासरी महला पंजवा पूजा वर्त तिलक स्नाना पुन दान बोधैन कहू ना पूजय संजन स्वामी बोले मीठे बैन प्रभ जी को नाम जबत मन चैन बो प्रकार खोज सब ताकू बिखम न जाई लैन रहा जाप ताप ब्रह्मन बसुदा कर उर्द ताप लै गैन यो बिद ना पतिया नो ठाकुर जोग जुगत कर जैन अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस कृपैन सत्संग रंग प्रभ भेटे नानक मुख जन रैन तनासरी महला पंचवा बंधन ते छुटकावै प्रभु मिलावै हर हर नाम सुनावै स्थिर करे न चलियो मनुआ बोड़ नक तू धावै है कोई ऐसो अमरा मीत सगल समग्री जियो ही ओ देओ अर्पो अपनो चीत रहाओ पर तन पर के निंदायन सुबित न लागै संता संग संत संपाखन हर कीर्तन मन जागै गुण निधान दयाल पुरख प्रभ सर्ब सुख दयाला मागै दान नाम तेरो नानक जो माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा हर हर लीने संत्यो बार हर के दास की चित वै बुरे आई तसी को फिर मार रहाओ जनका आप सहाय हुआ नदक पागै हार प्रमत प्रमत माही मुए बहुण ग्रह न मंजा नानक शरण परियो दुख भंजन गुण गावै सदाया पार निंदक मुकाला हुआ दीन दुनिया के दरबार तनासरी मल्ला पंजवा अब हर राखण हर चितारिया पतित पुनीत किए किन पीतर सगला रोग बिदार या रहाओ गोष्ट पई साध कै संगम काम क्रोध लोभ मारिया सिमर सिमर पूर्ण नारायण संगी सगले तारिया कदमंतर मूल मन एक है मन विश्वास प्रभ धारिया चरण रेन बचनित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवा मेरो लागो राम सिंह हेत सतगुर मेरा सदा सहाई जन दुख का काटिया केत रहा
ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਓ ਆਪਣ ਨਾ ਕਰ ਬਿਰਥਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਈ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੇ ਮੁਕਾਲੇ ਕੀਨੇ ਜਨ ਕਾਇਆ ਸਹਾਈ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ ਰਾਖ ਲਈਏ ਕੰਠ ਲਾਏ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਨਾਨਕ ਕਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

हृदय वास संतन का संग पावो, सोग अग्न मैं मन ना व्याप, आठ पहर गुण गावो। स्वास्थ्य व्यवस्था हर की सेवा, माध्यंत प्रभ जापन, नानक रंग लगा परमेश्वर, बौहड़ जन्म ना छापन। तना श्री महला पंजवा, मांगो राम ते सब थोक, मानक को जाच श्रम पाइय, प्रभ का सिमरण मोख रहाओ। कोखे मन जन सिमरत प्राणा, वेद पुकार कोख, कृपा सिंध सेव सच पाइय, दुमै सुहेले लोक, आन आचार व्यवहार हैं जेते, बिन हर सिमरन फोक। नानक जन्म मरण पे काटे, मिल साधु बिन से सोक। तना श्री महला पंजवा, तृष्णा बुज हर का नाम, महासंतोख हुए गुर बचनी, प्रभ सो लागे पूरन ध्यान। रहाव महाकलोल बुझ माया के, कर कृपा मेरे दीन दयाल, अपना नाम देहे जप जीवा, पूरन हुए दास की काल। सगल मनोरथ राज सुख रस, सद खुशियां कीर्तन जप नाम, जिसका कर्म लिखिया तुर करता, नानक जन के पूरन काम। तना श्री महला पंजवा, जन की कीनी पार ब्रह्म सार, निंदक टिकन न पावन मूले, उड गए बेकार रहाव। जहां जहां देखो तहां तहां स्वामी, कोई न पोचन हार, जो जो कर अवज्ञा जन की, हुए गया तात शार। करन हार रखवाला हुआ, जाका अंत न पारा बार, नानक दास रखे प्रभ अपने, निंदक काटे मार। तना श्री महला पंजवा, कर नौमा पड़ताल एको अंकार, सतगुर प्रसाद हर चरण सरन, गोबिंद दुख पंजना, दास अपने को नाम देवो, दृष्ट प्रभ तारो, कृपा कर तारो, पूजा गह कूपते कड लेव रहो। काम क्रोध कर अंत माया के बंद, अनक दोखा तन शाद पूरे, प्रभ न आना रख नहारा।

0: पहला सच्चा सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लोह सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदे आखे लाख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर
1: सच्चे तेरे सिफत सच्चे सालाह सच्चे तेरी कुदरत सच्चे पाशाह नानक सच त्याय सच जो मर्ज मैं सो कच निकच महला पहला।

0: कुल्लू चरखा चक्की चक थल वारों ले बहुत अनंत लटू मदानिया नगाह पंखी पौंदे लैन सा सूए चाड़ पवाई है जंत नानक पौंदे गणत नंत बंधन बंद पवाए सोए पया कृतन च सब कोए नच नच हसे चलने सिरोए उडना जाही सिदना होए नचण कुदन मन का चाओ नानक दिन मन पाओ तना मन पाओ पौड़ी
1: ना उतरंकार है ना एले नरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जे अगवाइए जे लोड़े जंगा अपना करपनो नी सदाइए जे जरवाना पर हरै जरवेस करिंदी आइए को रहना परिये पाइए को रहना परिये।

सब सरियत पड़ पड़ करें विचार। बंदे से जे पवच बंदे वेखण को देदार, हिंदू सलाही सलाहन दर्शन रूप अपार, तीर्थ नावे अर्चा पूजा गुरबास प्रकार, जोगी

0: रूपी सुमाहे। कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे। नानक कह सुनहो जनहो इत संजन दुख जाए पौड़ी।
1: सेवकती संतोखी जन सत्यो सत्याया।

हमे सब जलाय। जो सह सच्चा विसरै त्रिग जीवन संसार, नदर करे न अभिसरै गुरमति विचार। सतगुर मिले ता मिल रहा, सच रखा और धार, मिलिया होए ना विछड़ै।

आईए न अंदर विसन कोरे आप करे किस आखी है आपे बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरै ता सच बनया सीगार सच्चा।

समाए सो सह मेरा रंगला रंगे सह सपाए रंग कामन रंग नाता चढ़े जा फिर कै अंक समाए चिरी भी छुने पी मिलने जो सतगुर सेवाना अंतर नव निध नाम है खान खर्च नान खुटई हर गुण सहज रवाना ना वे जन्म है ना मरहे ना वे दुख सहन गुरु राके से उबरे हर स्यों केल कराना सज्जन मिले ना।

जियो। गुण सार न जानी परम पुलाणी, जो बन बाद गवाया, वर कर दर दर्शन नहीं जाता, फिर का सहज न पाया। सतगुर पूछ न मार्ग चाली, सूती रहन विहानी, नानक बाल तन राडे पा, बिन फिर धन कमलाणी। बाबा मैं वर दे मैं हर वर पावे, तिसकी बल राम जियो। रव रहे आजुग चार त्रिपवन, बाणी जिसकी बल राम जियो। ते

मनलाया। आनंद ने मेल पया मन मानिया, घर मंदिर सुहाई, पंच शब्द तुन अनहत वाजे, हम कर साधन आए, आवो मीत प्यारे, मंगल गावो नारे। सच मंगल गावो ता प्रभ भावो, सोहे लड़ा जुगचारी, अपने करया या थान सुहाया, कार्य शब्द सुवारी, ज्ञान महारस नेत्री इंद्र त्रिपुण रूप दिखाया। सखी मिलो रस मंगल गावो, हम कर साधन आया, मन तन अमृत पिन्ना, अंतन प्रेम रतन्ना, अंतर रतन पदार्थ मेरे, परम तत् विचारु, जंत पेक तू सफलो दाता, सिर सिर देव नहार, तू जान ज्ञानी, अंतर जामी आपे कारण कीना। सुनो सखी मन मोहन मोहया, तन मन अमृत पीना, आत्म राम संसारा, साचा खेल तुम्हारा, सच खेल तुम्हारा, अगम अपारा, तुद बिन कौन बुझाए।

गुण गावे तृप्त अगाही। हर गुण गाए सदा तृप्तासी, फिर भूख न लागे आए। दह दिस पूज होवे हर जन की, जो हर नाम त्याए। नानक हर आपे जोड़ विछोड़े, हर बिन को दूजा नाही। साजन आए उठे कर माही, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सूही महला तीजा, कर तीजा भगत जना की। हर जीव रखे जुग जुग रखदा आया राम।

हर हर नाम समाए राम। गुर कै शब्द सत जीवन मुक्त पई, हर कै नाम लेव लाए राम। हर नाम जित लाए गुर मेल मिलाए, मनु आरता हर नाले। सुखदाता पाया मोह चुकाया, अंधन नाम संभाले। गुर शब्दे राता सहजे माता, नाम मन वसाए। नानक तिन कर सद ही सोयला, जे सतगुरु सेव समाए। बिन सतगुरु जग भरम बुलाया, हर का मैल न पाया राम। गुरमुखे एक मेल मिलाया, तिनके दुख गवाया राम। तिनके दुख गवाया, जा हर मन पाया। सदा गावे रंग राते, हर के भगत सदा। जन निर्मल जुग जुग सद ही जाते, साची भगत करे दर जापै। कर दर सच्चा सोई, नानक सच्चा सोहिला। सच्ची सच बाणी सब दे ही सुख होई। सोही महला तीजा, जे लोड़े वर बालणीए, ता गुर चरणी चित लाए राम। सदा हो वै सुहागणी, हर जियो मरे न जाए राम। हर जियो मरे न जाए, गुर कै सहज सुभाए।

राती राम। तित तन मेल न राती, हर प्रभ राती मेरा प्रभ मेल मिलाए। अंदर रावे हर प्रभ अपना, विचों आप गवाए। गुरमत पाया सहज मिलाया, अपने प्रीतम राती। नानक नाम मिलै वड़ियाई, प्रभ रावे रंग राती। पिर रावे रंग रातणीए, पिरका मैल तिन पाया राम। सो सहवत निर्मल दाता, दिन विचों आप गवाया राम। विचों मोह चुकाया, जा हर पाया हर कामण मन पाणी। अनदन गुण गावै निर साची, कथे अगत कहानी। जुग चारे साचा एको वरतै,

काया फिर तत् दिवाई। हर पाया पुरख अगामय गोचर साध नाव तन बल सखाई, नानक कृपा करके मिले विछड़ कदे न जाई सुई। महला चौथा।

त्यावो सिमरत नाम दृढ़ाया। सतगुर गुर पूरा आराधो सब किल विक पाप गवाया। सहज आनंद हुआवड़ पागी मन हर हर मीठा लाया। जन कह नानक लाभ पहली आरंभ का दरचाया। हर दूजड़ी लाभ सतगुर पुरख मिलाया। बलराम जियो निरपो पै मन होय हो मैं मैल गवाया। बलराम जियो निर्मल पो पाया हर गुण गाया। हर वेखे राम अधूरे हरे आत्म राम पसारिया। स्वामी सरबरया प्रभ पूरे अंतर बार। हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए। जन नानक दूजी लाभ चलाई अनहद शब्द बजाए। हर तीजड़ी लाभ मन चाओ पया बैरागिया। बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया। वड पागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया। हर गुण गाया मुख बुली हर बाणी। संत जना वड पागी पाया हर कथिया अकथ कहानी। हिरदय हर हर हर तुन उपजी हर जपिए मस्तक पाग जियो। जन नानक बोले तीजी लावै हर उपजे मन बैराग जियो। हर चौथड़ी लाव मन सहज पया हर पाया। बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुभाए हर मन तन मीठा लाया। बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रपाया अंधन हर लिवलाई। मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी वधाई। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हृदय नाम विगासी। जन नानक बोले चौथी लावे हर पाया प्रभ अविनाशी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही संत महला चौथा कर दूजा। गुरमुख हर गुण गाए हृदय रसन रसाए। हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए मिलिया सहज सुभाए। आनंदन भोग भोगे सुख सुवै शब्द रहै लिवलाए। वड्डे पाग गुर पूरा पाइए अंदर नाम त्याए। सहजे सहज मिलिया जग जीवन नानक सुन समाए। संगत संत मिलाए हर सर निर्मल नाए। निर्मल जल नाए मैल गवाए भय पवित्र शरीरा। दुर्मत मैल गई परम पागा हो मैं बिनठी पीरा। नदर प्रभु सत संगत पाई निज कर हुआ वासा। हर मंगल रस रसन रसाए नानक नाम प्रगासा। अंतर रतन विचारे गुरमुख नाम प्यारे। हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया। ज्ञान प्रचंड बलिया कट चानन कर मंदिर सोहाया। तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रभ साचे पाया। जो प्रभ कहे सोई पर की जय नानक अंक समाया। हर प्रभ काज रचाया गुरमुख वियाहुण आया। वियाहुण आया गुरमुख हर पाया सातन कंत प्यारी। संत जना मिल मंगल गाए हर दियो आप सवारी। सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई। नानक प्रभ पाया मैं साचा ना कदे मरे न जाई। राग सूही संत महला चौथा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के राम। गुरमुख मिल रही है करवाजै शब्द कनेरे राम। शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई। एनस जपी सदा सलाही साच शब्द लिवलाई। आन दिन सहज रह रंगराता राम नाम रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाणे अवर न जाने दूजा। सब में रब रहया सो प्रभ अंतर जामी राम। गुर शब्द रवै रब रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम। प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी कटकट रव्या सोई। गुरमत सच पाइये सहज समाइये तिस बने अवर न कोई। सहजे गुण गावा जे प्रभ पावा आपे लई मिलाए। नानक सो प्रभ शब्द जापै एनस नाम ते आए। एहो जगो दुत्र मन मुख पार न पाई राम। अंतर एहो मैं ममता काम क्रोध चतराई राम। अंतर चतराई थाए न पाई बिरथा जन्म गवाया। जम मग दुख पावे चोटा खावे अंत पया पछताया। बिन नामे को बेली नाही पुत कुटंब सुत पाई। नानक माया मोह पसारा आगे साथ न जाई। हाओ पूछो अपना सतगुर दाता किन बदुत्र तरिये राम। सतगुर पाए चलो जीवत्या इव मरिये राम। जीवत्या मरिये भौजल तरिये गुरमुख नाम समावै। पूरा पुरख पाया वडपागी सच नाम लिवलावै।
ਮਾਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਕਰ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੌਰ ਸੰਤ ਜਿਨੋ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਿਸਨਾ ਬੁੱਝ ਗਈ ਆਸੀ, ਹਉ ਮਨ ਧਨ ਦੇਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਭ ਗੁਣਤਾਸੀ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਵੱਡ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹਰ ਸਾਬਾਸੀ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੇ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਪੰਥ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾਂ, ਕਰ ਆਵੋ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ, ਮਿਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਨਾਹਾ, ਹਉ ਤੁਜ ਬਾਜੋ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀਆਂ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਰ ਮਰਾਹਾ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਤਿਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਹਾ, ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਚਲ ਚਲ ਪਰਮਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਨਿਤ ਆਸਾ ਮਨ ਚਿਤਮੈ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਲਗਾਇਆ, ਅਨਤਾ ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਦੱਬਿਆ, ਫਿਰ ਬਿਖ ਭਾਲਣ ਗਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੂੰ ਬਿਰਨਾਵੈ, ਪਚ ਪਚ ਮੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਇ ਕਰੇ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਸੁਧ ਬੁਧ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਮਨ ਆਸਾ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਵੇਦਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਗੁਰਦੇਖਤ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ, ਵਡਭਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਮਿਲ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਵਾਰਿਆ, ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਮਾਰੇ ਹਿਸਵੇ ਜਨ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਖਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਨ ਦਿੱਤੀਆ, ਦੇ ਕੰਚਨ ਵੇ ਬੰਨੀਆਂ।

जय बलराम जियो बाबल मीरा वड़ समर्था करण करण प्रभारा। जिस सिमरत दुख कोई न लागे पौजल पारे उतारा। आद जुगाद भगतन का राखा उस्त कर दीवा नानक नाम महारस मीठा अंदर मंथन पीवा।

दुख ना व्यापै कोई, जल थल मैल पूर्ण स्वामी, जात देखा तत सोई। परम मोह विकार नाठे प्रभ नेरो ते नेरा, नानको प्रभ कृपा की जय, नेत्र देखै दर्श तेरा। कोट करण दी जय प्रभ प्रीतम, हर गुण सुनिए बनासी राम, सुन सुन एहो मन निर्मल होवै, कटिए काल की फासी राम, कटिए जम फासी सेवन बनासी, सगल मंगल सुगियाना। हर हर जप जपिए दिन राती, लागे सहज त्याना, कलमल दुख जारे प्रभु चितारे, मन की दुर्मत नासी, कहो नानक प्रभ कृपा की जय, हर गुण सुनिए अविनासी।

अव सागर नाव हर से वाजो चढ़ै ते सतारग राम भव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महाविकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बांशत वल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा की जय मन सदा चलै तेरे मार्ग एहो वर एहा बढ़ियाई एहो तन होई वडपागा राम एहो रंग एहो रस पुगा हर चरणी मन लागा राम मन लागा चरणे प्रभ की सरणे करण कारण गोपाला सब किश तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा सूई मनला पंजवा हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम सिमर सिमर।

सन्मुख अज्ञान। एक ना आप बुझायुन गुरमुख हर ज्ञान, भगत खजाना बख्शियुन हर नाम निधान। श्लोक मल्ला तीजा। सूहवीए सुहावेस छड तू ता पिर लगी प्यार, सूहै वेस पिर किन्ने न पायो, मनमुख दज मई गवार। सतगुरु मिलिया सूहा वेस, गया हो मैं विचो मार, मन तन रत्ता लाल हुआ, रसना रती गुण सार। सदा सुहागुण शब्द मन पै पाए करे, सिगार नान करमी मैल पाया, पिर राख्या उरतार। महला तीजा। मुंदे सुहा पर हरो लाल करो सिगार, आवन जाना विसरे गुरु शब्दी विचार। मुंद सुहा भी सोनी जिस कर सहज पतार, नानक सातन रावी है रावे रावण हार। पौड़ी मोह कूड़ कुटंब है, मनमुख मुग्धरता, हो मैं मेरा कर्म ए किश साथ ना लिता।

जलाए। पावे जीव क्या मरो, दूरो भी बज जाहे पौड़ी। तुद दुख सुख नाल उपाया, लेख करते लिखिया ना मैं जीवड़ होर दाद, ना ही तिस दुख ना रखिया। नाम अकुट निधान है, गुरमुख मन वसिया। कर कृपा नाम देव सी, फिर लिखा ना लिखिया। सेवक भाई से जन मिले, मिल हर जन जपिया। श्लोक मल्ला दूजा, जिन्नी चलन जानिया से क्यों करे विथार, चलन सारना जाननी कार सवारण हार। मल्ला दूजा, रात कारण तन संचिए, पलके चलन होए। नानक नाल न चलई फिर पछतावा होए। महला दूजा, बड़ा चट्टी जो परे, ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारी है नानक का दसार। महला दूजा, मन हट तरफ न जिपई, जे बो त्या कर लै तरन फरे, सत भाऊ दे जन नानक शब्द विचारे पौड़ी। करते कारण जिन किया, सो जाने सोई। आपे दृष्ट उपायन आपे फुन गोई। जुग चारे सब भव थकी, किन कीमत होई। सतगुरु एक विखालिया, मन तन सुख होई। गुरमुख सदा सलाही है, करता करे सोई। श्लोक मल्ला दूजा, जिन्ना पाओ तिन नाहे पाओ, मुच पाओ निपवा। नानक ए उपटम बरतित दी बाण गया। महला दूजा, तुरदे कहो तुरदा फिलै, उड़ते कहो उड़ता। जीवते कहो जीवता मिले, मुए कहो मुआ। नानक सो सलाई है, जिन कारण किया रहाओ। सच त्यायन से सच्चे, गुर शब्द विचारी। हम मैं मार मर निर्मल, हर नाम रतारी। कोठे मुंडप माणिया, लग पे गवारी। जिनकी ये तसे न जाननी, मनमुख गुबारी। जिन बुझाए जिस बुझाए, सो बुझसी। सच्चा क्या जंत विचारी। सोक मल्ला तीजा, कामण तो सिगार कर, जहां पहला कंत मनाए।

आप लह मिलाई। मैं तुझ बिन बेली को नहीं, तू अंत सकाई, जो तेरी शरणागति जन लै छाई। नानक वे प्रवाहो है तिस तिल ना तमाई। राग सोही बाणी श्री कबीर जी हो, तथा सबना भगता की। कबीर के एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

को नीत नरसै पटवारी। ऊपर पुजा कर मैं गुर पह पुकारिया तिन हो लिया उभारी रहाओ। नौ टाडी दस मुसंफ धावै रैयत बसन न देही डोरी पूरी मापै नाही वो बिस्टाला लेही तरमराई का दफ्तर सोदिया बाकी रिज रिजमन काई संतां को मत कोई निंदो संतराम है एको कहो कबीर मैं सो गुर पाया जा को नाउ विवेको। राग सोही बाणी श्री रविदास जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

चरैनथरनाही। संग चलत है हम्पी चलना, दूर गवन सिर उपर मरना। क्या तू सोया जाग एना, तै जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया, सो रिजक अमरावै, सब कट पीतर हाट चलावै। कर बंदगी छाड़ मैं, मेरा हृदय नाम समार सवेरा। जन्म सिरानो पंथना, सवारा सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रविदास निदान दिवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। सोई उच्चे मंदिर साल रसोई, एक करी फुन रहन न होई। एहो तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पीला गे काड़ सवेरा। घर की नार उरह तन लागी, ओह तो भूत भूत कर भागी। कह रविदास सबे जग लुटिया, हम तो एक राम कह छुटिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की। तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरो, बावल होए सुलहो सो लहो लोरो। तैसे मन मह किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोष। तै साहेब की मैं सार न जानी, जोबन खोए पाशे पछतानी। रहाओ काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। पिरह बिहून कतै सुख पाए, जा होए कृपाल ता प्रभु मिलाए। वितण

नाम नरहरा। जान ऊपर कृपा प्राप्ताई, मिल सतगुर पार पराराओ। हमरे पिता ठाकुर प्रभु स्वामी, हर देहो मती जस करा। तुमरे संग लगे से उदरे, ज्यों संग काष्ठ लोह तरा। साकत नर होसी मत मध्यम, जिन हर हर सेव ना करा। ते नर भागहीन दोहचारी, ओए जन्म मुए फिर मरा। जिनको तुम हर मिलो स्वामी, ते नाए संतोख गुरसरा। दुर्मत मैल गई हर भजिया, जन नानक पार परा। बिलावर मल्ला चौथा, आवो संत मिलो मेरे भाई। मिल हर हर कथा करो, हर हर नाम बोयत है। कल जुग केवट गुर शब्द तरो, मेरे मन हर गुण हर उचरो। मस्तक लिखत लिखे गुण गाय, मिल संगत पार परो रहाओ। काया नगर महराम रस उत्तम, क्यों पाइये उपदेश जान करो। सतगुरु सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाख दिखो। गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब बिखरसो। राम नाम रस राम रसायन, हर सेवो संत दिनो। चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर पजो। बिलावल मिला चौथा, खत्री ब्राह्मण सूद वैस, को जापै हर मंत्र जपैनी। गुर सत गुर पार ब्रह्म कर पूजो, नित सेवो दिन सब रैनी। हर जन देखो सतगुरु नैनी, जो इच्छो सोई फल पावो। हर बोलो गुरमत मैनी रहाओ। अन के उपाव चित भी है, बहु तेरे सा होवै जे बात होवै नी। अपना भला सब कोई बाछे, सो करे जे मेरे चितना चितैनी। मन की मत त्यागो, हर जन यह बात कठैनी। अंदन हर हर नाम त्याव, गुर सतगुरु की मत लैनी। मत सुमत तेरे वस स्वामी, हम जंत तू पुरख जन तैनी। जन नानक की प्रभ करते स्वामी, जो पावै तिवै बुलैनी। बिलावल मला चौथा, अनद मूल त्यायो परखोत्तम। अंदन अंदन अंदे तरमराय की कान चुकाई, सब झुके जमके फंदे। जप मन हर हर नाम, गोबिंदे वडपागी। गुरु सतगुरु पाया, गुण गाए परमानंदे। रहाओ साकत मूड माया के, बदक विच माया फिरे फिरंदे। तसना जलत कृत के बादे, ज्योते ली बलद पबंदे। गुरमुख सेव लगे से उदरे, वडपागी सेव करंदे। जिन हर जपया तिन फल माया, जिन हर जपया तिन फल पाया। सब टूटे माया फंदे, आपे ठाकुर आपे सेवक। सब आपे आप गोविंदे, जन नानक आपे आप। सब वरतै ज्यों राख्या तिवें रहंदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग बिलावल मला चौथा, पड़ताल घर तीरमा। बोलो भैया राम नाम, पतत पावनो हर संत भगत तारणो। हर पर पूरे रहया, जल थले राम नाम। नृत गाइये हर दुख बिसारणो रहाओ। हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख बिसारण हारा। गुर पेटिया है मुक्त दाता, हर किए हमारी सफल जाता। मिल संगति गुण गावनो, मन राम नाम कर आसा। पाओ दूजा बिन सबनासा, विच आसा होई निरासा। सो जन मिलिया हर पासी, कोई राम नाम गुण गावनो। जन नानक तिस पगला, अनुराग बिलावल मल्ला। पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नदरी आवै तिस स्यो मोह, क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तोहे। कर कृपा मोहे मार्ग पावो, साध संगत कै अंचल लावो। क्यों तरिए बिखिया संसार, सतगुर पोहित पावे पार रहाओ। पवन चुलारे माया दे, हर के भगत सदा तिरथे। हर कसोग ते रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्व पोयंगा, हमें पचे दीपक देख पतंगा। सगल सिगार करे नहीं पावे, जा होई कृपालता गुरु मिलावे। हाँ फिरो दासी मैं एक, रतन दसाया निर्मोलक हीरा मिले ना।

आदि जुगाद जाका बड़ प्रताप गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थाई बूठे सब सुख पाए सतगुर तूठे पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाली जिथे किथे दिसै नाले नानक दास कसम प्रतपाले बिलावल मिला पंजवां सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे अगनत गुण ठाकुर प्रभ तेरे मोहि अनाथ तुमरी सरनाई कर कृपा हर चरण त्याई दया करो बसो मन माही दया करो बसो मन आई मोहि निर्गुण दीजै लड़ लाए रहो प्रभ जित आवे ता कैसी पीड़ हर सेवक नाही जम पीड़ सर्व दुख हर सिमरत नसे जाके संग सदा प्रभ से प्रभ का नाम मन तन आधार बिसरत नाम हो तन सार प्रभ जित आए पूर्ण सब काज हर बिसरत सब का मोहताज चरण कमल संग लागी प्रीत बिसर गई सब दुर्मतरीत मंत नियंत्र हर हर मंत नानक भगतन कै कर सदा आनंद राग बिलावल मुला पंजवा कर दूजा या नड़िए कै कर गावना एक ओंकार सतगुर प्रसाद

जो प्रभ अपने कियो। हार चंद्योरी चित ब्रह्म सकिए मृग तस्ना द्रम छाया चंचल संग न चाल सकिए अंतल तज जावत माया रस भोगण अत रूप रस माते इन संग सुख न पाया। धन धन हर साध जन सकिए नानक जनी नाम त्याया जाए बसोवट पागणी सकिए संता संग समाइय तह दुख न पूख न रोग न व्यापे चरण कमले वलाइय तह जन्म न मरण ना आवण जाना नेचल सरणी पाइय। प्रेम बिशोहो ना मोह व्यापे नानक हर एक त्याय दृष्ट धार मन भेदिया प्यारे रत्ने सह सुबाए। सेज सुहावी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाए सकी सहेली राम रंग राती मंत्र इच पुजाए। नानके अचरच अचरच स्यों मिलिया कहना कछु न जाए राग बिलावल मल्ला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक रूप सगलो पसारा आपे बनज आप व्यवहारा है सो ज्ञान बिरलोई पाए जात जात जाइए तत दृष्टाए रहाओ। अनक रंग निर्गुण एक रंगा आपे जल आप ही तिरंगा आप ही मंदिर आपे सेवा आप ही पुजारी आप ही देवा आपे जोग आप ही जुगता नानक प्रभ सद ही मुक्ता बिलावल मल्ला पंजवा। आप उपावन आप सुधरना आप करावन दोष न लेना आपन बचन आप ही करना आपन विपो आप ही चरना रहाओ। आप ही मस्त आप ही बुलना आप ही अशलना चाई शुलना आप ही गुप्त आप प्रकटना आप ही कटकट आप अल्पना आप ही अवगत आप संगरतना कहो नानक प्रभ के सब जतना बिलावल मल्ला पंजवा। पूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुरवट पागी पाया सिमर मना राम नाम चितारे बस रह हृदय गुरचरण प्यारे। काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना बंधन काट मुक्त गुर कीना दुख सुख करत जन्म फन मुआ चरण कमल गुर आश्रम दिया। अग्न सागर बुढ़ संसारा नानक बाह पकर गुरु नानक बाह पकर सतगुर निस्तारा बिलावल मल्ला पंजवा। तन मन तन अरपो सब अपना कवन समत जित हर हर जपना कर आसा आयो प्रभ मांगन तुम पेकत सुभा मेरे आंगन रहाओ।

जाके जाहे न गणे रहाओ। सगल सरंजाम करे प्रभ आपे भय मनोरथ, सो प्रभ जापे अर्थ धर्म काम मोख का दाता। पूरी भई सिमर सिमर विदाता, साध संग नानक रंग माणिया कर आया। पूरे गुरु आणिया बिलावल मल्ला पंजवा सर्व निदान, पूर्ण गुरुदेव रहाओ। हर हर नाम जपत नर जीवे, मर खुआर साकत नरथीवे। राम नाम हुआ रखवारा, चख मारो साकत विचारा। निंदा कर कर पचै कनेरे, मृतक फास गलै सिर पैरे। कहो नानक जपै जन नाम, ताके निक न आवे जाम। राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा दुबदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कवन संजोग मिलो प्रभ अपने, पल पर निमुख सदा हर जपने। चरण कमल प्रभ के नित्यावो, कवन समत जित प्रीतम पाओ रहो। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर न काहू। बेरे बिलावल महला पंजवा, चरण कमल प्रभ हृदय त्याय। रुग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटिया दीनो दान। सबल जन्म जीवन प्रवान रहाओ, अकथ कथा अमृत प्रभ बानी। कहो नानक जप जीव है ज्ञानी, बिलावल मल्ला पंजवा। सांत पाई गुरसत गुरपुरे, सुख सह सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। रहाओ ताप पाप संताप विनाशे, हर सिमरत किलविक सब नासे। आनंद करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पैज सवारी। बिलावल मल्ला पंजवा, ममता मोत्रो मद माता बंधन बाध्या अत बिकराल। दिन दिन बिष्ट दिन दिन झिझित, बिकार करत औद फाही। फाता जम कै जाल, तेरी शरण प्रभ दीन दयाला। महा बिकम सागर अत भारी, उदरो साधु सागर वाला। रहाओ प्रभ सुखदाते समरस स्वामी जियो, पिंड सब तुमरा माल। प्रम के बंधन काटो परमेश्वर नानक के, प्रभ सदा कृपाल। बिलावल मल्ला पंजवा, सगल आनंद किया परमेश्वर अपना। बिरद समारिया साध जना होई कृपाला, बिकसे सब परवारिया। कार सतगुरु आप सवारिया, वड्डी आरजा हर गोविंद की। सुख मंगल कल्याण विचारिया, रहाओ। वण त्रिण त्रिपवन हरिया होए, सगले जी सधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारिया। मिलावल मल्ला पंजवा, जिस उपर होवत दयाल। हर सिमरत काटे सुकाल, रहाओ साध संग भजिए गोपाल। गुण गावत तूटे जमजाल, आपे सतगुर आपे प्रतपाल। नानक जाचै साधरवाल, बिलावल मल्ला पंजवा। मन में सिंचो हर हर नाम, अंदन कीर्तन हर गुण गाम। ऐसी प्रीत करू मन मेरे, आठ पैर प्रभ जानो नेरे। रहाओ कहो नानक जाके निर्मल भाग, हर चरणी ताका मन लाग। बिलावल मल्ला पंजवा, रोग गया प्रभ आप गवाया। नींद पई सुख सहज कर आया, रहाओ। राज राज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माय त्याई। नानक गुर पूरे शरण आई, जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा, सतगुरु कर दीने अस्त्र कर कर बाहर। रहाओ जो जो निंद करे इन ग्रहण की, तिस आग्या ही मारे करतार। नानक दास ताकी शरण आई, जाको शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवा, ताप संताप सगले गए। बिन सेते रोग पार, ब्रह्म तू बख्शया संतन रस भोग। रहाओ सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन अरोग। गुण गावो नित नाम के, अवखत जोग आए बसो कर देस। मैं ए भले संजोग, नानक प्रभ सुप्रसन्न भय लह गए वियोग। बिलावल मल्ला पंजवा, काहो संग न चल ही माया जंजाल। ऊट सुधारे छत्रपत संतन कै ख्याल। रहाओ अहम बुद्ध कहो बिनस ना, एह तर की ढाल। बहुत जोनी जन्मै मरै, बिख्या बिकराल। सत बजन साधु करै, नित जपै गोपाल। सिमर सिमर नानक तरे, हर के रंग लाल। बिलावल मल्ला पंजवा, सहज समाध आनंद सुख पूरे। गुरदीन सदा सहाई संग, प्रभ अमृत गुण चीन। रहाओ जय जयकार, जगतर मैं लोचै। सब जी आसु प्रसन्न भय, सतगुरु प्रभ कछु बिघ्न न थिया। जाका अंग दयाल प्रभ ताते, सब दास सदा सदा वडियाईया। नानक गुर पास, राग बिलावल महला पंजवा। कर पंजवा चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृत मंडल जग सा

गोबिंद गोपाल राम नाम तन संचया जाका तन नहीं समार भगत राधा एक रंग गोविंद गोपाल राम नाम तन संचया जाका नहीं समार शरण परे प्रभ तेरी आ प्रभ की वढ़ियाई नानक अंत न पाइया बेअंत गोसाई बेलावल महला पंजमा सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कार्य पहे रास करतारपुर करता वसा संतन का पास रहाओ बिघन न को लागता गुर पह अरदास रखवाला गोविंद राय भगतन की रास तोट नाम करे मूल पूर्ण भंडार चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगमया पार बस्त कमावत सब सुखी किशून ना दीसा संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसा जय जयकार सब कर सच थान सुहाया जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया बेलावल महला पंजवा हर हर हर आराधिया होइया आरोग रामचंद की लास्ट का जन मारिया रोग रहाउ गुर पूरा हर जापिया नित की चा भोग सा संगत कह वारण मिलिया संजोग जिस सिमरत सुख पाइया बिनसा बेहोग नानक प्रभ शरणागति करण कारण जोग राग बिलावल महला पंजवा दुपदे कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर पाप सब त्यागया दारू नाम लया ता पाप सब मिटे रोग शीतल मन भया गुर पूरा राधया सगला दुख गया राखन हार राखिया अपनी करमया रहाओ बाह पकड़ प्रभ काढ़िया कीना अपनाया सिमर सिमर मन तन सुखी नान निर्भया बेलावन महला पंजवा कर तर मस्तक थाप्या नाम दीनो दान सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकि नहीं हान आपे ही प्रभ राखता भक्तन की आन जो जो चितवै साधत जन सो लेता मान रहाओ शरण परे चरणारविंद जन प्रभ के प्राण सहस पाई नानक मिले ज्योति ज्योत समान बिलावल महला पंजवा चरण कमल का यात्रा दीनो प्रभ आप प्रभ शरणागत जन परे ताका सत प्रताप राखण हर अपार प्रभ ताकी निर्मल सेवा राम राज रामदास पुर कीने गुरदेव रहाओ सदा सदा हर त्याइया किश बिघन न लाग नानक नाम सा लाइया पै दुश्मन भग बेलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधिया मिल साध समाग उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भग राम नाम जो जन जपै अन दिन साध जाग तंत मंत न जो ही तित चाख न लाग रहाऊ काम क्रोध मद मान मोह बिनसे अनराग आनंद मगन रस राम रंग नानक सरनाग बिलावल महला पंजवा जी अजोगत वस प्रभु कह जो कह सो करना पही प्रसन्न गोपाल राय पहु किश नहीं करना दुख न लाग कदे तुद पार ब्रह्म चे तारे जम कंकर निड़ना वे गुरसिख प्यारे रहाओ करण कारण समर्थ है तिस बिन नहीं होर नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर बेलावल महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ अपना नाठा दुख ठाओ विश्राम पाए मिल साध संग ताते बौड़ न थाओ बलिहारी गुरे अपने चरणन बल जाओ अंद सुख मंगल बने पेखत गुण गाओ रहाओ कथा कीर्तन राग नाद तुने हो बनो सुवाऊ नानक प्रभ सो प्रसन्न पहि बांछत फल पाऊ बेलावल महला पंजवा दास तेरे की बेनती रिद कर परगास तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुण तास कीर्तन नाम सिमरत रहू जब लख सास रहाऊ
मात पिता बंधव तू है, तू सर्व निवास, नानक प्रभ शरणागति, जाको निर्मल जास। बेलावल महला पंजवां, सर्व सिद्ध हर गाइया, सब भला मनावा, साध साध मुख ते कह, सुन दास मिलावा। सुख सहज कल्याण रस, पूरा गुर कीन, जी सगल दयाल पै, हर हर नाम चीन रहाउ। पूरे ओ सर्वत्र मैं को प्रभु गुणी गहीर, नानक भगत आनंद मैं पेख प्रभु की तीर। बेलावल महला पंजवा, हरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल, राख लिया अपना सेवको मुख निंदक शार। तुझ न जो है को मीत, जन तू गुर का दास, पार ब्रह्म तू राख्या दे अपने हाथ रहाओ। जीहन का दाता एक बिया नहीं होर, नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बेलावल महला पंजवां, मीत हमारे साजना राखी गोविंद, निंदक मृतक हो गए तुम हो ने चंद्र हाउ। सगल मनोरथ प्राप किए भेटे गुरुदेव, जय जयकार जगत में सफल जाकी सेवर। ऊंचा पार अगण तहार सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरा साथ। बेलावल महला पंजवां, गुर पूरा आराध्या हुई कृपाल, मार्ग संत बताया टूटे जमजाल। दुख भूख संसा मिटा, दुख भूख संसा मिटिया गावत प्रभ नाम। सहज सुख आनंद रस, पूर्ण सब काम रहाओ। जलन बुझी शीतल पहि राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जाका वड प्रताप। बेलावल महला पंजवां, धरत सुहावी सफल थान पूर्ण पै काम, पहु नाठा प्रमिट गया रव्या नित राम। साध जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई कड़ी सो लखनी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगट पै संसार में फिरते पह नाम, नानक ते शरणागति घट घट सब जान। बेलावल महला पंजवा, रोग मिटाया प्रभ उपजिया सुख शांत, वड प्रताप जर जरूप हर कीनी दात। गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा पाई, हम तिस की शरणागति जो सदा सहाय रहाओ। बिरती कदे न हो वई जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। बेलावल महला पंजवा, मर मर जन्मे जिन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेवियान दिन रंग राता। शांत सहजानंद कणा पूर्ण पहियास, सुख पाया हर सत्संग सिमृत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन तुम्हें अंतर जामी, थान थन अंतर आव रहे नानक के स्वामी। बेलावल महला पंजवा, ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारा राम कार दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औखत दिया काले बलाई रहाओ। राख लिए तिन रखनहार सब ब्याद मिटाई, कव नानक कृपा पही प्रभ पही सहाई। बलावल महला पंजवा, अपने बाल के आप रखियन पार ब्रह्म गुरदेव, सुख शांत सहज आनंद पहे पूर्ण पही सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जी वालियन जाका वड प्रताप। दुख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी, मन बांछत फल दित्यन नानक बलिहारी। राग बिलावल महला पंजवां, चौपदे दुबदे घर शेवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

तीरनेक संपूर्ण एक प्राण आधारा निर्मल निर्मल सुचा सुचो सुचवा सुचो सुचा अंत न अंता सदा बेअंता कहु नानकूचो ऊचा बिलावन महला पंजवा बिन हर कामना आवत हे जा शिवराच माच तुम लागे मोहनि मोहावत ही रहाओ कन कामनी से ज सोनी छोड़खिन मैं जावत हे उर चरहो इंद्री रस प्रेरियो बिखठ गौरी खावत हे त्रिणको मंदर सा सवार्यो पावक तलह चरावत हे ऐसे गढ़ मह अठ अठिलो फूल फूल क्या पावत हे पंचदूत मूड पर ठंडे केस गए फेरावत हे दृष्णा वह अंध ज्ञानी सोए रहो मद मावत हे जाल पसार चोक बिस्तारी पंखी ज्यो फहावत हे कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख त्यावत हे बेलावल महला पंजवा हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारू मनाए आधारू चीत चितवो जैसे पान तंबोली रहाओ सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रिय मुख लागू जो बड़ फागू सुहाग हमारू कतु न डोली रूप न तूप न गंध न दीपा होत बहुत अंग अंग संग मौली कहु नान प्रिय रवि सुहाग ने अतनी की मेरी बनी खटोली बेलावन महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद मई जबते पेटे साध दियारा तबते दुर्मत दूर पही रहाओ पूर्ण पूर हो संपूर्ण शीतल साध दयाल दई काम क्रोध तृष्णा हंकारा तन ते हुए सगल खई सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते उमंत लई कहु नानक जिने मनु कहु नानक जिन मनु पछान्या तिन सिंह सगली सोज पई बिलावल महला पंजवा क्या हम जियो जंत बेचारी बर्धन सा कहे करो माई ब्रह्म हेस सिद मुनिन्द्रा बेंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथी है किस कथन न जाई जय जय देखा दरया समाई रहाउ जय महापयान दुख जम सुनिया तह मेरे प्रभ तू है सहाई शरण प्रयु हर चरण गहे प्रभ गुरु नानक को बूझ बुझाई बेलावल महला पंजवा अगम रूप अवनासी करता पथत पवित्र निमख जपाइया चरज सुनियो प्राप्त पेटुले संत चरण चरण मन लाइया कित बितिया कित संजम पाइया कहो सुरजन गो कित जुगती त्याय रहाओ जो मानुख मानुख कोई सेवा हो तिसकी लई लई फुन जाइया नानक शरण शरण सुख सागर मोह टेक तेरो एक नाइया बेलावल महला पंजवा संत सरन संत टहल करी तंद मंद हर सगल जंजारू अवर का ते छूट परी रहाओ सुसहजर कणु आनंदा गुरते पायो नाम हरी ऐसो हार रस बर्णन साको गुरपुर मेरी उल्ट तरी पेख्यो मोहन सब का संगे ऊन काहू सगल परी पूरन पूर हो कृपा ने कहो नानक मेरी पूरी परी बेलावल महला पंजवा मन क्या कहता हूँ क्या कहता जान पर वीन ठाकुर ब्रव दे मेरे तिह आगह क्या कहता रहा अन बोले को तुही पछाना जो जियन मैं होता रे मन काहे कहाँ लो डहकै जो पीखती ही संग सुनता ऐसो जान पहे मन आनंद आना बियो करता कहु नान गुर पहे दियारा हर रंग न कबू लेता बेलावल महला पंजवा।

जो तुम करो सोई पल मानो मन ते छूटा सगल को मान। कहो नानक ता की शरण आई जाका किया सगल जहान। बेलावल महला पंजवा मन तन अंतर हा मन तन अंतर प्रभ आही। हर गुण गावत पर पुकार नित तिस रसना का मूल किश नाही रहाओ। कुल समूद्र खिन पीतर जन्म जन्म की मल लाही। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना आनंद सेती बिख्या बन गाही। चरण प्रभु कै मोहे थपाए भव सागर पार पराही। संत सेवक भगत हर तांके नानक महला कह ताही। बेलावल महला पंजवा धीरो देख तुम्हारे रंगा तुही स्वामी अंतर जामी। तुही वसह साध कै संग रहाओ खिन मैं।

शीतल सुख पायु मन तृप्ति हर सिमरत श्रम सगले लाथ निद निदान नान खर सेवा अवर सियान सगले आकाथ बेलावल महला पंजवा अपने सेवक को कहू ना बेसारो लागु स्वामी प्र मेरे पूर्व प्रीत गोविंद बिचारो हाउ पतत पावन प्रवृत्त मारू हमरे दुख हृदय मत तारू जीवन प्राण हर तन सुख तुम्ही हम है बटल कृपा कर जारू जल बिहून मीन कत जीवन दून दूध बिना रहन कत बारू जन नानक प्यास जन कमलन की पेख दर्श स्वामी सुख सारू बेलावल महला पंजवा आग पाछा कुशल पहया गुरपुर पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभ कीनी माया रहाउ मन तन रब रहा हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सह जानंद गुण गाई दूत दुष्ट सब होए खया।

पीर लगैया। हों खेन खे पल रहन सको बिन, प्रीतम ज्यों बिन मलै मली मर गैया। जिनको प्यास हुए प्रभु के रीत, निवरण पावै बिन हर को दोइया।

ओंकार सतगुर प्रसाद। उपमा जात न कही मेरे प्रभु की, उपमा जात न कही तज्ञान शरण गही रहाउ। प्रभु चरण कमलिया पार हर हो जाऊं सत बलिहार।

पह तरे सागर पार मन डोर प्रेम परीत ए संत निर्मल रीत तज गाये पाप बेकार हर मिले प्रभु निरंकार प्रभु पेखिय बिस्माद चख आनंद पूर्ण साध नह डोलिए तऊत प्रभु बसे हर हर चीत तिन नाही नरक निवास नित सिमर प्रभ गुणतास ते जमन पेख नैन सुन मोहे अनहत बैन हर सरन सूर गोपाल प्रभ भगत वस दयाल हर निगमल है न पेव नित कर मुन जन सेव दुख दीन दर्द ने मार जाकी महा बिखड़ी कार ताकि मित न जान कोय जल तल मैयल सोय

संसार त्रस पार, हर चरण बोहित ताहि मिल साधु, संग जस गाई हर पैज रखै मुरार, नानक सरन द्वार। बिलावल महला पहला थित्ती घर, दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एकम एक अंकार निराला, अमर जुनी जात न जाला, अगम अगोचर रूप न रेख्या, खोजत खोजत घट घट देख्या, जो देख दिखावै तिसको बल जाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, क्या जप जप बिन जग दीसै, गुर का शब्द महल कर दी सराहाव। दूजा पाई लगे पछताने, जमदर बाधे आवन जाने, क्या ले आवा क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाए, बिन गुर शब्द न छूट सकोए, पाखंड की न मुक्त न होए, आप सच किया कर जोड़, अंड जो फोड़ जोड़ वे छोड़, तरत कास किए बैसन को थाऊ, रात अंत किए पहु पाऊ, जिन की ये कर वेखनहारा, वरना दूजा सिरजनहारा, तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देहो पाए वेसा, ज्योति जाति गणत ना आवै, जिन सा जी सो कीमत पावा, कीमत पाए रहा भरपूर, किस नेड़ै किस आखा दूर, चौथो पाए चारे बेदा, खाने चारे बाणी पेदा, अष्ट दसा खट तीनो पाए, सूबु जज सा बजाए, तीन समावै चौथा वासा, प्रणत नान हमता के दासा, पंचमी पंच भूत बेताला, पे गोचर पुरख निराला, एक ब्रह्म पूखे मोह प्यासे, एक रस शाग शब्द तृप्ता से, एक रंग रात

द्वाद मुद्रा मन आतूता एन समझा गै कव न सूता जागद जाग रह लिवलाए गुर परचै तिसकाल न खाए अतीत पहे मारे बैराई प्रण मतनान तह लिवलाई द्वाद सी दाया दान कर जाना बाहर जातू पीतर आना बरती बरत रह नेकयाम जप जाप जपै मुख नाम तीन पवन मैं एको जाना सबस संजम साज पछाण तीर तरव रस मुद कनार अमृत मूल सिखर लिव तारा

टीका। जी जंत तेरी सरणाई, सो मिला जिस लै मिलाई, शुक्रवार प्रभ रहा समाई, आप पाए सब कीमत पाई। गुरमुख है सो कर विचार, सत्संजम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रात पूजा, बिन बूजे सा पाउ है दूजा। चरचर बार सामण शास्त विचार, हम मेरा परम है संसार, मन मुख हंदा दूजा पाए, जम दरबादा चोटा खाए। गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लेव लाए, सतगुर सेव है सेवट पागी, हम मार सच लेव लागी। तेरे रंग राते सह सुपाए, तू सुखदाता लह मिलाए, कस्ते दूजा नाई कोए, गुरमुख बूजा सो जी होए। पंद्रह तीन तै सत वार, महारुति आवह वार वार, दिन सरैण तवै संसार, आवा गौण किया करतार। निचल साच रया कल तार, नानक गुरमुख पूजा को शब्द विचार, बेलाव महला तीजा। आदि पुरख आपे सृष्ट साजे, जी जंत माया मोह पाजे, दूजा पहे परपंच लागे, आवह जाय मरै पागे, सतगुर भेटिया सो जी पाई, परपंच चूकै सच समाई। जाकै मस्तक लिखिया लेख, ताकै मन वसिया प्रभ एक, रहाउ सृष्टो पाहि आपे सब वेखै, कोई न मिटै तेरा लिखै, सिद्ध साधक जे को कै कहाई, परमे पूला आवै जाय। सतगुर सेवै सोजन बूजै, हो मैं मारे तांदर सूजै, किते सब दूजा हुआ, एको वरता अवर न बिया। दूजे तेजे को जाना, गुर कै शब्द हर दर निशाना, सतगुर भेटे तां एको पाई, विचो दूजा ठाक रहाए, जिसदा साहब डाडा होए, तिसनो मारना सा कै कोई। साहब की सेवक रह सरनाई, आपे बख्शे दे बड़े आई, तिस ते ऊपर नाई कोई, कौन डर डर किसका होई। गुरमती शांत वसै शरीर, शब्द चीन लगै शब्द चीन फिर लगै ना पीर, आवै ना जाए ना दुख पाए, ना मेरा ते सह समाए। नानक गुरमुख वेखै हादूर, मेरा प्रभ साध रहा भरपूर, एक सेवक एक परम पुलाई, आपे करे हर आप कराई। एको वरतै वरण कोय, मन रोस की जै जे दूजा होय, सतगुर सेवे करनी सारी, दर साचै साचे विचारी। तित्ती वार सब शब्द सुहाई, सतगुर सेवे तां फल पाई, तित्ती वार सब आवह जाए, गुर शब्द निचल सदा सत समाई। तित्ती वार तां जा सच राते, बिन नावै सब परमै काचे, मन मुख मरै मर बिगती जाहि, कन चेतै दूजा लो पाई, अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्दा क्यों पाए पार। आप पाई हो पावन हार, आपे की तुन कुर विचार, बहुते पे करे पेख तारी, पाव पाव परम काची सारी। ऐथै सुख न आगा होए, मन मुख मोए अपना जन्म खोए, सतगुर सेवे परम चौकाए, कर ही अंदर सच महल पाए। आपे पूरा करे सोहे, थित्ती वार दूजा दोए, सतगुर बाजू अंध गुबार, थित्ती वार सेवै मुगद गवार। नानक गुरमुख बूजै सो जी पाई, कित नाम सदा रहा समाए, बेलावल महला पहला, शंत दखणी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद।

संगुति राम धन सा संगुति हर संगसुति संग सखी सहेलिया एक पाहे एक मन नाम अस्या सतगुरु हम मेलिया दिन रैन घड़ी ना चसा विसरा सा सास निरंजन शब्द जोत जगाए दीपक नानका पहु पंजन जोत सबाड़िए त्रिपवन सारे राम घट घट रव रया अलखा पारे राम अलख अपार अपार साचा अमार मिलाइया हो मैं ममता लोभ जालो शब्द मैल चौकाइया धर जाए दर्शन करी पहण है तार तार नहार यार नाम अमृत चाख तृप्ति नानका व्रत हरिया बेलावल महला पहला मैं मन चाओ कणा साच विकासी राम मोही प्रेम फिरे प्राभ्य अवनासी राम अवगत हर नाथ नाथा दिशा पावे सोथिया कृपाल सदा दयाल दाता जी अंदर तू जिया मैं अवर ज्ञान ध्यान पूजा हर नाम अंतर वास रहे पेख पवनी हठ ना जाना नानका सच गय रहे भिन्न लड़ी रहन भली दिन सुहाय राम निज कर सुतड़िए प्रम जगाए राम नवहान नव तन शब्द जागी अपने पिर पाणिया तज कूड़ कपट सोपाऊ दूजा चाकरी लोकाणिया मैं नाम हर का हार कंठे साच शब्द नी साणिया कर जोड़ नानक साच मांगा नदर कर तुद पाणिया जाग सलोनड़िए बोलै गुरबाणी राम जिन सुन मन अड़ी अकथ कहानी राम अकथ कहानी पद निर्वाणी कोविरला गुरमुख बूझे ओ शब्द समाई आप गवाए त्रिपन सो जी सूझे रह अतीत परंपरा ता साच मन गुण सारिया ओ पूरया सर्वठाई नानका उर तारिया महल

धन धन गुरु सबास जिन हों मैं मारी राम जिन वड भागी हां वड भाग हा हर हर उर तारी राम जन नानक नाम सलाहे तू नामे बलहारी राम बेलावल महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगल साज पया प्रभ अपना गाया राम अवनासी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागै वड्डा भागै कब मिलिया पूर्ण पते सहजे समाइया गोविंद पाइया देह दे सखिए मोहे मते दिन रैन ठांडी करो सेवा प्रभ कवन जुगति पाया बिनमंत नान करो कृपा लहो मोहे लड़ लाया भया समाहड़ा हर रतन विसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिल संत प्यारे दया तारे कथा है अकथ विचारो एक चित एक मन त्याय स्वामी लाय प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रापै कर बिनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथाह साह अटल गणया पूर्ण संजोगो रामा सुख है समूह पया गया बेजोगो राम मिल संत आए प्रभ ते आए बने अचरज जांजिया मिल अकत्र होए सहज टोए मन प्रीत उपजी मांजिया मिल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करण कारण जोगो पवन सुहावड़ा तरत सुभागी राम प्रभ कर आयड़ा गुर चरनी लागी राम गुर चरण लागी

करन हारा प्रभ बिना नहीं जानिया आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से जाना जिन्नी हर रस पिया बेलावल महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वासे आओ सखी असी पिरका मंगल गावा तजमान सखी तजमान सुख सखी माते अपने प्रीतम पावा तजमान मोह बेकार दूजा सेवेक निरंजन लग चरण शरण दयाल प्रीतम सगल दुरत बेखंडनो होए दास दासी दाजो दासी पहुड़ विधि न तावा नानक पै अंपै करो कृप कृपा ताम मंगल गावा अमृत प्रया का नाम अंधले टोहनी ओ जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी महाबचित्र चंचल अनक भाव देखावे होए ठीठ मीठी मन लागै नाम लैण ना आवे गृह बना है तीरह बरत पूजा बाट घाटा जोहनी नानक भयं पै दया तारो नै नाम अंदले टोनी मोहे अनाथ प्राया न्याथ जो जान है त्यों रखो चतराई मोहे नाहे री चाहो कह मुखो नह चतुर सुघर सो जान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं रूप तूप नह नैन बंके जह पावे तह रख तुही जय जय जंपै सगल जाको करुणा पत गत किन लखो नानक पयंपै सेव सेवक ज्यो जानो तुह मोय रखो मोहे मछली तुम नीर तुझ बिन क्यों सरा मोहे चातरक तुम बूंद तृप्तो मुख परा मुख

मिल होए हमारी होए गते। लाडले लाडलडाए सब मैं मिल हमारी होए गते। चीत चितवो मिटे अंधारे ज्यों आस चकवी दिन चरण। नानक पयम पै प्रंग संग मेली मछली नीर नाम ईसरा। तन तन हमारे पाग घर आया फिर मेरा। सोहे बंक द्वार सगला बन हरा। हर हरा स्वामी सुख है कामी। आनंद मंगल रस कणा नवल नव तन्ना बाला। कवन रसना गुण पणा मेरी सेज सोही देख मोही। सगल सहसा दुख हरा नानक पयम पै मेरी आस पूरी। मिले स्वामी अपरंपरा बिलावल महला पंजवा। शंत मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। सुंदर शांत दयाल प्रभ सर्ब सुखा निध पियो। सुख सागर प्रपिटिया नानक सुखी हो ते हो जियो। शांत सुख सागर प्रपाइया जब हुआ पागो राम। मानन मान मंजाइया हर चरनी लागो राम। छोड़ सियान बचातरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम। नानक पव सरनाई राम राय थिर होए सुहागो राम। सो प्रभ तज कत लागिया जिस बिन मर जाइया राम। लाज नावै ज्ञान मती दुर्जन।

मार काढ़ल सब मार कढ़ गए हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए सलोक महला तीजा अंदर कपट सदा दुख है मन मुख ध्यान न लागै दुख विचकार कमावनी दुख वरतै दुख आगा करमी सतगुर भेटिया ता सच नाम लिव लागा नानक सहजे सुख होए अंदरो ब्रह्म पहु पागा महला तीजा गुरमुखो सदा हर रंग है हर का नाउ मन पाया गुरमुख वेखण बोलना नाम जपत सुख पाया नानक गुरम ज्ञान प्रगासिया तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया महला तीजा मन मुख मैली मरह गवार गुरमुख निर्मल हर राख्या उर तार भणत नानक सुनो जन पाई सतगुर सेव हो हमें मल जाई अंदर संसार दुख व्यापे सिर धंधा नित मार दूजा पाए सूते कबू ना जागह माया मोह प्यार नाम न चेता शब्द ना विचारा यो मन मुका विचार हर नाम न पाया बिरथा जन्म गवाया नानक जम मार करे खुआर पौड़ी जिसनु हर भगत सच बख्शियन सो सच्चा साहु तिसकी मोहता जी लोक कढ़दा होरत हट ना वथ ना वे साहू भगत जना को सनमुख होवै सो हर रास ले वे मुख पास खाहू हर के नाम के वापारी हर भगत है जम जागाती तिन्ना नेड़ ना जाहू जन नानक हर नाम तन लद्या सदा वे प्रवाहू सलोक महला तीजा इस युग मैं भगती हर तन खटिया होर सब जगत परम पुलाया गुर प्रसादी नाम मन वसया अन दिन नाम ते आया बिख्या माए उदास है हुमै शब्द जलाया आप तरिया कुल उदरे धन जने दी माया सदा सहज सुख मन वसया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण भुले हुमै मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजा पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले बिन गुर तत् न पाया।

पैज सवारी। तौ गुण कहाँ जगत गुरा, ज्यों कर्म न नसै। सिंह शरण कत जाइए, ज्यों जम्बुक ग्रसै रहाओ। एक बूंद जल कारणे चात्रिक दुख पावे। प्राण गए सागर मिले, फुन काम न आवे। प्राण जो थाके थिर नहीं, कैसे बिरमावो। बूढ़ मुए नौका मिले, कहो काहे चढ़ावो। मैं नहीं कछ हो नहीं, किसे आहे न मूरा।

जपत गोपाल कर कृपा मेरे दीन दयाला साधु की मन मंगै रवाला। हो दयाल देहु प्रभ दान नानक जप जीवै प्रभ नाम। गोंड महला पंजवा। धूप दीप सेवा गोपाल अनक बार बंदन करतार। प्रभ की शरण गही सब त्याग गुरसो प्रसन्न भये बड़ भाग। आठ पहर गाइए गोबिंद तन धन प्रभ का प्रभ की जिंद। रहाओ हर गुण रमत भये आनंद पार ब्रह्म पूर्ण बख्शंद। कर कृपा जन सेवा लाए।

गोबिंद जी चंद सगले बख्शिंद, तेरी शरण प्रभ दीन दयालु, पार ब्रह्म जब सदा निहाल रहाओ। प्रभ दयाल दूसर कोई नाही, घट घट यंत्र सर्व समाही, अपने दास का हालत पलत सवार, पतत पावन प्रभिरद तुमार, औखद कूट सिमर गोबिंद। तंत मंत भजिय भगवंत, रोग सोग मिटे प्रभ त्याय, मन बाचत पूर्ण फल पाय। करन करन समरथ दयार, सरमर दान महाबीचार, नानक बख्श लिये प्रभ आप, सदा सदा एको हर जाप। गौंड महला पंजवां। हर हर नाम जपो मेरे मीत, निर्मल होए तुम्हारा चीत, मंतन की समिट बलाए, दुख अंधेरा सगला जाए। हर गुण गावत तरिय संसार, वडभागी पाइय पुरख अपार, रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल, तिसको पो ना सके जमकाल। जग में आया सो परमान, गुरमुख अपना खसम पछाण, हर गुण गावे संत प्रसाद, काम क्रोध मिटै उन्माद। सदा हजूर जान भगवंत, गुरपूरे का पूर्ण मंत, हर तन खाट किए भंडार, मिल सतगुर सब काज सवार। हर के नाम रंग संग जागा, हर चरणी नानक मन लागा। गौंड महला पंजवां। भव सागर बोहित हर चरण, सिमरत नाम नाही फिर मरण। हर गुण रमत नाही जम पंथ, महाबीचार पंच दूता मंत, तौ शरणाई पूर्ण नाथ, जंत अपने को दी जय हाथ रहाओ। सिमरत शास्त्र वेद पुराण, सिमरत शास्त्र वेद पुराण, पार ब्रह्म का करे वख्याण, जोगी जति वैष्णो रामदास, मित नाही ब्रह्म विनाश। करण पला करें शिव देव, तिलनी बूझे अलख अपेब, प्रेम भक्त जिस आपे दे, जग में विरले केई के। बोहे निर्गुण गुण किशु नाहे, शर्म निधन त्रि दृष्टि माहे, नानक दीन जाचे त्रि सेव, कर कृपा दी जय गुरदेव। गौंड महला पंजवां। संत का लिया तरत बेदारों, संत का निंदक आकाश ते टारों, संत को राखो अपने जी नाल, संत उधारों तत खिण ताल। सोई संत जे पावे राम, संत गोबिंद कै एक काम रहाउ, संत कै ऊपर दे प्रभात, संत कै संग बसे दिन रात। साध साध संतां प्रतपाल, संत का दुखी राज ते टाल, संत की निंदा करू ना कोई, जो निंदा तिसका पतन हुई। संत की निंदा करू ना कोई, जो निंदा तिसका पतन हुई, जिसको रखे सृजनहार, झख मारो सगल संसार। प्रभ अपने का पया बिसास, जियो पिन सब तिसकी रास, नानक को उपजी प्रतीत, मन मुख हार गुरमुख सरजीत। गौंड महला पंजवां। नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सिमरत पाप बलायण, रहाओ। नारायण समहे निवास, नारायण घट घट प्रकाश, नारायण कहती नरक न जाहि, नारायण शिव सगल फल पाहि। नारायण मन माहि आधार, नारायण बोहित संसार, नारायण कहत जम भाग पलायण, नारायण दंत भाने डायण। नारायण सर सद बख्शिंद, नारायण कीने सुखे आनंद, नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत को माई बाप। नारायण साध संग नारायण, बारंबार नारायण गायण, बसते गुचर गुर मिल लही, नारायण ओट नानक दास गही। गौंड महला पंजवां। जाको रख रखन हार, तिसका अंग करे निरंक

कार रहाउ मात घर मैं अगन न जो है, काम क्रोध लोभ मोह ना पो है। साध संग जपै निरंकार, निंद के मोह लागे शारु। राम कवच दास का सनाहा, दूत दुष्ट तिस पोहत नाह। जो जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरण आए। जो जो शरण पै हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए। जे को बहुत करे हंकार, जे को बहुत करे अहंकार, वो खिन में रुड़ता खाकू नाल। हैपी साचा होमनहार, सदा सदा जाई बलिहार। अपने दास रखे कृपा तार, नानके प्र प्राण आधार। गोंड महला पंजवा। अचरज कथा महायनूप, प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप। रहाओ ना ए बूढ़ा ना ए बाला, ना ए सदूक नहीं जमजाला। ना ए बिनसै ना ए जाए, आज जुगादी रह समाए। ना इस उसन नहीं इस सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत। ना इस हरख नहीं इस सोग, ना इस हरख नहीं इस सोग। सब किश इसका ए करने जोग, ना इस बाप नहीं इस माया। ए अपरंपर होता आया, पाप पुन का इस लेप न लग गए। घट घट अंतर सद ही जाग गए, तीन गुणा एक शक्ति उपाया। महामाया ता की है छाया। अशाले अशेद अभेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल। ताकि गातमित कछु न पाए, नानक ताकै बल बल जाए। गौंड महला पंजवा। संतन कै बलिहार जाओ, संतन कै संग्राम गुण गाओ। संत पर सर किल विख सब गए, संत शरण बड़ भागी पए। राम जपत कछ बिघन न व्यापै, गुरु प्रसाद अपना प्रभ जपै। रहाओ पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करै रवाल। काम क्रोध स्तंति जाए, राम रतन वसै मन आई। सफल जन्म ताका परवान, पार ब्रह्म निकट कर जान। पाए भगत प्रभ कीर्तन लागै, जन्म जन्म का सोया जागै। चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रौ सच अपार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावै जन तूर। रागोंड महला पंजवा। घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार। सत गुर प्रसाद कर नमस्कार पूरे गुरदेव। सफल मूरत सफल जाकी सेव, अंतर जामी पुरख बधाता। आठ पहर राम रंग राता, गुरु गोबिंद गुरु गोपाल। अपने दास को राखण हार। रहाओ पातशाह शाह उमराओ पतियाए, दुष्ट अहंकारी मार पचाए। निंदक मुख कीनो रोग, जय जयकार करे सब लोग। संतन कै मन महा आनंद, संत जपै गुरदेव भगवंत। संगत के मुख उजल पै, सगल थान निंदक के गए। सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर भी परवाहे। सगल पै मिटे जाकी शरण, निंदक मार पाए सब धरन। जन की निंदा करे न कोई, जो करे सो दुखिया होए। आठ पहर जन एक त्याए, जमुआ ता कै निकट न जाए। जन निरवैर निंदक अहंकारी, जन पल मने निंदक वेकारी। गुर कै सिख सतगुरु त्याया, जन उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरतें हर द्वारी। जैसा करे सो तैसा पाई,
अभिमानी की जड़ सर पर जाए, नी तरिया सतगुर धर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जां कै सिमरन पैज सवारी। राग गौंड बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहिला एको ओंकार। सत गुर प्रसाद संत मिलै, किश सुनिऐ कहिऐ, मिलै असंत मस्त कर रही है। बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रव रही है। रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले झाख मारी। बोलत बोलत बड़े बेकारा, बिन बोले क्या करें बिचारा। कहो कबीर शूशा घट बोले, परया होए सो कब हूना डोले। गोंड नरु मरे नर काम ना आवे, पशु मरे दस काज सवारे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो। बाबा रे रहाओ हाड जले, जैसे लकड़ी का तूला। केस जले जैसे घास का पूला। कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे। घोंड आकाश गगन पाताल गगन है, चौं दिश गगन रहायली। आनंद मूल सदा पुरखोत्तम, घट बिनसै गगन न जायली। मोहे बैराग पयो, ये जीव आए कहां गयो। रहाओ पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहत हो, कर्मै किन जियो दीन रे। हर मैं तन है, तन मैं हर है, सरबंध रंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, सजे हुए सो हुए रे। राग गोंड बाणी कबीर जियो की, कर दूजा एक ओंकार। सत गुर प्रसाद भुजा बांध पिला कर डार्यो, हस्ती क्रोप मूड में मार्यो। हस्त भाग कै चीसा मारै, या मूर्त कै हौ बलहारै। आए मेरे ठाकुर तुमरा जोर, काजी बकबो हस्ती तो। रहाओ रे महावत तुझ डारो काट, इसे तुरावो का लो साट। हस्त न तोरै तरै ध्यान, वाकै हृदय बसै भगवान। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर को दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार, बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया भर लीना, मन कठोर अज हूं ना पतीना। कह कबीर हमरा गोबिंद, चौथे पद में जन की जिंद। गोंड नाए मानस नाए देओ, नाए मानस नाए देओ। नाए जति कहा वैसे ओ, नाए जोगी ना ओ तूता। ना समाए न काहू पूता, या मंदिर में कौन बसाई। ता का अंत न को पाई। रहाओ नाए गिरही ना उदासी, नाए राज न भीख मंगासी। ना इस पिंड न रख तू राती, नाए ब्राह्मण नाए खाती। ना ए तपा कहावै शेख, ना ए जीवै न मरता देख। इस मरते को जी को रोवै, जो रोवै सोई पत खोवै। गुरप्रसाद में डगरों पाया, जी मन भरन दो मिटवाया। कहो कबीर ए राम की अंश, जस कागद पर मिटै न मनस गोंड। टूटे धागे निखुटी पाण, द्वार उपर चिलकावें कान। कूच बेचारे फूए फाल, या मुड़िया सिर चढ़बो काल।
ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਸਗਲੋ ਦਰਬ ਖੋਈ, ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾਕਸਰ ਹੋਈ, ਰਹਾਓ ਤੁਰੀ ਨਾਰ ਕੀ ਛੋਡੀ ਬਾਤਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾ ਕੰਮ ਨਰਾਤਾ। ਲੜਕੀ ਲੜਕਨ ਖੈਬੋ ਨਾਹ, ਮੁੰਡਿਆ ਆਂਦਨ ਤਾਂ ਪੇ ਜਾ, ਇੱਕ ਦੋਏ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋਏ ਬਾਠ, ਹਮਕੋ ਸਾਤਰ ਅਨੁ ਕਉ ਖਾਟ। ਮੂੰਡ ਪਲੋਸ ਕਮਰ ਬਦ ਪੋਥੀ, ਹਮ ਕੋ ਚਾਬਨ ਉਨ ਕੋ ਰੋਟੀ, ਮੁੰਡਿਆ ਮੁੰਡਿਆ ਹੂਏ ਏਕ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਬੂੜਤ ਕੀ ਟੇਕ। ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਲੀ ਲੋਈ ਬੇਪੀਰ, ਇਨ ਮੁੰਡੀਅਨ ਪਜ ਸ਼ਰਨ ਕਬੀਰ, ਗੋਂਡ ਖਸਮ ਮਰੈ ਤੋ ਨਾਰ ਨ ਰੋਵੈ, ਖਸਮ ਮਰੈ ਤੋ ਨਾਰ ਨ ਰੋਵੈ, ਉਸ ਰਖਵਾਰਾ ਔਰੋ ਹੋਵੈ। ਰਖਵਾਰੀ ਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾ, ਸਿਆਗੈ ਨਰਕ ਇਹਾ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ, ਏਕ ਸੁਹਾਗਣ ਜਗਤ ਪਿਆਰੀ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਜੰਤ ਕੀ ਨਾਰੀ, ਰਹਾਓ ਸੁਹਾਗਣ ਗਲ ਸੁਹੈ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੋ ਬਿਖ ਬਿਕਸੈ ਸੰਸਾਰ, ਕਹਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹਿ ਪਖਿਆਰੀ, ਸੰਤ ਕੀ ਠਿਠਕੀ ਫਿਰੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਸੰਤ ਭਾਗਿਓ ਪਾਛੈ ਪਰੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਾਰੋਂ ਡਰੈ, ਸਾਕਤ ਕੀਓ ਪਿੰਡ ਪਰਾਇਣ, ਹਮਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰੈ ਤ੍ਰਿਕ ਡਾਇਣ, ਹਮ ਤਿਸਕਾ

गोंड मुको तार ले रम तार ले, मैं अजान जन तरबे ना जानो, बाप बीठला बांधे राओ। नरते सुर हुए जात निमक मैं, सतगुर बुद्ध सिखलाई। नरते उपज सुरग को जीत्यो, सो अवखद मैं पाई। जहां जहां तू नारद टेक, नैक टिकाव मोहे, तेरे नाम अविलंब बहुत जन उधरे। नामे की निज मत एहे गोंड, मोहे लागती तल बेली, बशरे बिन गाए अकेली। पानिया बिन मीन तलफै, पानिया बिन मीन तलफै, ऐसे राम नामा बिन बापरू नामा रहाओ। जैसे गाय का बाशा शूटला, थन चौंकता माखन कूटला। नामदेव नारायण पाया, गुर भेटत अलख लखाया। जैसे बिखै हित पर नारी, ऐसे नामे प्रीत मरारी।

करै निंद कव नै नहीं गुणै। ज्यो अनेक प्रसाद करावै भूमदान सुबह मंड पावै, अपना बिगार बैराना संडै करै निंद बोझो नी हंडै। निंदा कहाँ करो संसारा, निंदक का प्रगट पहारा, निंदक सोध साध बिचारिया, कहुर विदास पापी नरक सिधारिया। राम कली महला पहला, कार पहला चौप दे, एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी।

कोई उड़ा नील कोई सफेद, कोई कह तुर्क कोई कह हिंदू, कोई बांच पिस्त कोई सुरगिंदू, कहो नानक जिन खसम पछाता, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भीत जाता, राम कली महला पंजवा, पवन मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया, माटी माटी हुई एक, रोवन हारे की कवन टेक, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा, ए तो चलत भया रहाओ, अगली किस खबर न पाई, रोवन हार पीऊट सदाई, परम वो के बांधे बंद, सुपन भया पखलाए अंध, ए तो रच न रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार, ना को मुआ न मरण जोग, ना बिन सह अविनाशी होग, जोए जानो सोए नाहे, जोए जानो सोए नाहे, जानन हारे को बल जाओ, कहो नान गुर परम चुकाया, ना कोई मरे ना आवे जाया, राम कली महला पंजवा, जप गोबिंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवें, फिर ना खाई महाकाल रहाओ, कोट जन्म परम ब्रह्मायो, बड़े भाग साध संग पायो, बिन गुर पूरे नहीं उदार, बाबा नानक आखै ए बिचार, राग राम कली महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार, सत गुर प्रसाद, चार पुकार ना तू माने, खट पी एक बात वखाने, दस अष्टी मिले को कहया,

सुन जोगी कै मन मीठी, लागै रहाओ दूजा राम कली। महला पंजवा, तागा करके लाई थिगड़ी, लो नाड़ी सूआ है अस्ती। अंबे का कर डंडा धरिया, क्या तू जोगी घर में भरिया। जप नाथ दिन रैन आई, तेरी खिंता दो दिहाई। रहाओ गहरी विभूतलाए बैठा ताड़ी, मेरी तेरी मुंदरा तारी। मांगे टूका तृप्त न आवे, मांगे टूका तृप्त न पावे। नात छोड़ जाचे लाज ना आवे। चल चित जोगी आसन तेरा, सिंगी वाजे नित उदासीरा। गुर गुर कीतें बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई। जिसन हुआ नाथ कृपाला, जिसन हुआ नाथ कृपाला। रहरास हमारी गुर गोपाला, ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर। जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, इउं जपिया नाथ दिन रैणाई। हुण पाया गुर गोसाई, रहाओ दूजा राम कली। महला पंजवा, करन करावन सोई, आण न दिसै कोई। ठाकुर मेरा सुगड़ सजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा, गुरमुख ने विरलै डीठा। रहाओ निर्मल जोत अमृत हर नाम, पीवत अमर भये ने काम। तन मन सीतल अगन नवारी, आनंद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब कुछ तेरा, सद बलिहार जाऊं लख बेरा। तन मन जियो पिण दे साजिया, गुर कृपा ते नीच नवाजिया। खोल के वारा महल बुलाया, जैसा सत ऐसा दिखलाया। कहो नानक सब पर्दा टूटा, हों तेरा तू मैं मन बूठा। राम कली महला पंजवा, सेवक लायो अपनी सेव। अमृत नाम दियो मुख देव, सगली चिंता आप नवारी। तिस गुर कहो सद बलिहारी, काज हमारे पूरे सतगुर। बाजे अनहद तूरे सतगुर, रहाओ महिमा जाकी गहर गंभीर। होए निहाल दे जिस धीर, जाके बंधन काटे राहे। सो नर बहुर न जोनी पाए, जा कै अंतर प्रगट्यो आप। ताको नाहीं दुख संताप, लार तन तिस पल लै परिया। सगल कुटाम्बो जन लै तरिया, ना किश भरम न दुबदा दूजा। एको एक निरंजन पूजा, जत कर देखो आप दयाल। कहो नानक प्र मिली रसाल, राम कली महला पंजवा। तन ते छुटकी अपनी धारी, प्रभ की आग्या लगी प्यारी। जो किश करै सो मन मेरे मीठा, ता ए अचरज नैनो डीठा। अम जानी रे मेरी गई बलाए, बुझ गई तृष्ण नवारी ममता। गुरपुरै लियो समझाए, रहाओ कर कृपा राख्यो गुर शरणा। गुर पकराए गुर के चरणा, कर कृपा राख्यो गुर शरणा। गुर पकराए हर के चरणा, बीस बिसुए जा मन ठहराने। गुर पार ब्रह्मे कही जाने, जो जो जी जो जो कीनो हम तिसके दास। प्रभ मेरे को सगल नवास, ना को दूत नहीं बैराई। गल मिल चाले कै भाई, जा को गुर हर दीए सूखा। ता को बहु न लागै दूखा, आपे आप सर्व प्रतपाल। नानक रातो रंग गोपाल, राम कली महला पंजवा। मुक्ति पढ़ता टीका सहत, हिरदय राम नहीं पूर्ण रहत। उपदेश करे कर लोक दृढ़ावे, अपना कहया आप ना कमावे। पंडित वेद विचार, पंडित मन का क्रोध निवार। पंडित रहाओ आगे राख्यो साल ग्राम, अगै राख्यो साल ग्राम। मन कीनो दंदिश विश्राम, तिलक चिर